0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
2: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
1: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।

0: नशे सी चढ़ गई।
1: रेडियो पिस्तानी 1701 एम पर दोस्तों आप मेरे यानी सताक्षी के साथ हैं और मेरे साथ सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। यू नो व्हाट दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हर कोई जिंदगी में हर कोई हमारी साइड है। कुछ भी हो जाए, जिंदगी की कैसी भी सिचुएशन आए, ये बंदा जो है ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा हमारा हाथ थाम के रखेगा। बट सडनली सिचुएशन जब हमारी लाइफ की चेंज होती है ना, हमारा अच्छा वक्त जब बुरे वक्त में तब्दील होता है या टफ टाइम जिंदगी का आता है, तो उसी सडन सिचुएशन के हमारी लाइफ में बदलने के साथ कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिन पर आपको बहुत भरोसा होता है कि वो ये भरोसा आपका कभी नहीं तोड़ेंगे, वो भी सडनली चेंज हो जाते हैं और उस वक्त आप जिंदगी के भंवर में खुद को अकेले खड़ा हुआ पाते हैं। इसलिए हमेशा से ही खुद को तैयार रखिए कि लाइफ की जो भी सिचुएशन आए आप उसे अकेले फेस कर सकें, क्योंकि जब कभी जिंदगी में अकेले लड़ना पड़ता है ना सिचुएशंस के साथ में, तो बहुत तकलीफ होती है अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं या किसी पर भरोसा करते हैं। तो खुद को तैयार जरूर रखिए हर सिचुएशन के लिए, अकेले उसका सामना करने के लिए, अकेले लड़ने के लिए। सताक्षी के साथ इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रिस्वानी 1701 पर। आइए अभी सुनवाती हूँ आपको ये अगला ट्रैक।

अच्छा दोस्तों, हमारी जिंदगी में ना दो तरह के लोग होते हैं, या दो तरह के दोस्त कह सकते हैं होते हैं। एक वो जब आप थोड़ा सा उदास हो या परेशान हो या उस मूड में, उस जोनर में ना हो जिस पर आप नॉर्मली रहते हैं। एक बात करने का स्टाइल आपका होता है, लोगों की तरफ देखने का स्टाइल होता है, लोगों के साथ मिक्सअप होने का रोज का स्टाइल होता है। और कभी-कभी वो स्टाइल जब आप डाउन होते हैं ना, जब आप परेशान होते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किल होती है, तो वो स्टाइल चेंज होता है। आप बात नहीं करते लोगों से, आप चुप रहते हैं, आप शांत रहते हैं, है ना। ये हर इंसान की एक अलग सिचुएशन होती है, अपनी टफ सिचुएशन को डील करने के लिए हर किसी का एक अलग स्टाइल है। अब बात की मैंने उन दो लोगों की जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं। ये दो लोग वो लोग होते हैं जब आपका ये जो स्टाइल चेंज होता है ना नेगेटिव सिचुएशंस में या टफ सिचुएशन में, इनमें से एक बंदा जो है वो आपसे कहेगा कि यार बात करो, तुम बात नहीं करो। आप कहेंगे नहीं, मेरा मूड नहीं है। वो कहेगा कि इट्स ओके, योर चॉइस, राइट। होते हैं ना कुछ दोस्त हमारे ऐसे। लेकिन एक बंदा जो है, एक दोस्त हमारा जो है, वो हमारे पीछे पड़ जाता है, क्यों बात नहीं करनी, क्या हो गया है, मुझे बताओ, मैं कुछ मदद करूँ, ऐसे ही घुटते रहोगे, इस तरह की बहुत सारी बातें वो हमसे करता है। और जब तक हम बोल नहीं देते, हम परेशान नहीं हो जाते, हम इरिटेट नहीं हो जाते ना, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। हमें ज़िंदगी में ये दूसरे वाले जो लोग हैं ना, जो हमें इरिटेट करते हैं, हमारे दोस्त, उनके साथ रहना है। हमें उनके साथ नहीं रहना जो हमारी हर चॉइस हम पर छोड़ दें। कभी कभी ना जिंदगी में ये मन करता है कि कोई हो जो हमें कुरेदे, कोई हो जो हमें इरिटेट करे, हमसे बुलवाए, है ना। हम चाहते हैं, हम ऊपर से दिखाते नहीं, लेकिन हम चाहते हैं। और इसीलिए दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे दोस्त होने जो आपके पीछे पड़ जाए ना, बहुत ज़रूरी होते हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसे दोस्त हैं तो हमें बताइए, हमें रेडियो पिस्वानी के हमारे फेसबुक पेज पर बताइए। और मैं आपके और मेरे ऐसे दोस्तों के नाम प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो पिस्वानी, मेरे साथ सुनते रहिए आपका अपना ब्रेकफास्ट शो, इट हैपेंस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

बेहतरीन ट्रैक के बाद एक बार फिर से सताक्षी कहती है आपको गुड मॉर्निंग। रीजी प्रिस्वानी पर दोस्तों आप हैं मेरे साथ, मेरे यानी सताक्षी के साथ, और मेरे साथ सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। हर रोज शुरुआत होती है अपने सपनों के पीछे भागने की, है ना। हर रोज हम उठते हैं अपने ढेर सारे सपनों को संजोए हुए, या जो पुराने सपने हैं उनको पूरा करने की एक नई उम्मीद को लिए हुए। और सही भी है, अगर आज हम अपने सपनों के पीछे नहीं भागेंगे तो कल हमें हमारी जरूरतों के पीछे भागना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज सपनों के पीछे भागा जाए, क्योंकि जरूरतें आपकी उम्र कब खत्म कर देती हैं आपको पता नहीं चलता है। कम से कम जरूरत भर का या जरूरतों को पूरा करने भर का इंसान जो है वो तो हमें बनना पड़ेगा, है ना। इसलिए सपनों के पीछे आज भाग लीजिए ताकि कल अपनी जरूरतों को आप पूरा कर पाए। सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस, रेडियो प्रिस्वानी 107.0 FM। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस बात ने आपका आलस भगा दिया होगा। तो आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी के नाम ही है ये अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रिस्वानी।

गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों, सुबह की ताजा तरीन शुरुआत जो है वो तो चाय के साथ ही होनी चाहिए, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई हमसे कहता है चाय पियोगे, हम कहते हैं नहीं यार, मन नहीं, अभी तो पिए। देखिए, मुझे लगता है कि चाय के लिए कभी भी ना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि चाय के साथ जब आप एक इंसान के साथ बैठते हैं, जिसके साथ चाय पीते हैं, तो चाय पर आप सिर्फ अपना वक्त नहीं बांटते हैं, चाय के साथ आप अपने दिल का बोझ, आपके मन की परेशानियां, आपका दुख और आपकी खुशियां, आप सब कुछ शेयर करते हैं, है ना। तो अगली बार अगर कोई आपको चाय ऑफर करे ना, तो ना नहीं कहिए। क्या पता कोई खुद को आपके साथ बांटना चाहता हो, और खासकर घर पर, है ना। घर पर जब आप चाय पीते हैं ना, तो कितनी सारी बातें चलती हैं, कितनी सारी गपशप चलती है, कई पुराने किस्से भी चल पड़ते हैं, दिल खुश हो जाता है बीती यादों को याद करके। सो इतना खूबसूरत वक्त होता है चाय का वक्त, इसे जाया नहीं करना चाहिए और ना ही इससे मुकरना चाहिए। तो यार, जब भी कोई पूछे चाय पियोगे, तो अगर फ्री हैं तो बोल दीजिए हाँ पियेंगे, नहीं फ्री हैं तो थोड़ा वक्त निकाल के बैठ जाइए दो पल उसके साथ। तो बताइए, चाय पियेंगे? मैं पूछ रही हूँ इसलिए क्योंकि आप मुझे बुलाएंगे ना अपने घर। हाँ, अब स्टूडियो में तो पॉसिबल नहीं है, तो आप मुझे बुलाइए अपने घर, चाय पर बैठते हैं, गपशप करते हैं, ढेर सारी बातें हैं जो स्टूडियो के अलावा भी आपसे बांटी जाएंगी। फिलहाल आपकी चाय के नाम, आपके अपनों के नाम, ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी, मेरे साथ गर्मा गर्म चाय के सिप के साथ सुनते रहिए आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

रेडियो मिस्मानी 1701 AM सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। बहुत सारी बातें की आज हमने और बहुत सारी बातें हम अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। वैसे अभी बात करूंगी आपसे एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग पर। कई बार हम कहते हैं कि लाइफ में एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं आप एडजस्ट करते हैं ना तो आपके रिश्ते स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन उस एडजस्टमेंट से भी ज़्यादा दोस्तों अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ना। आप सिर्फ अगर एडजस्ट करते जा रहे हैं और ना आप सामने वाले को समझ रहे हैं ना सामने वाला आपको समझ रहा है, तो वो रिश्ता कभी भी सही ट्रैक पर नहीं चलेगा, क्योंकि आप सिर्फ एडजस्ट ही करते रहेंगे। हो सकता है कि वो इंसान इतना बुरा है जो आपसे सारी जिंदगी एडजस्ट करवाए, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले, आपको जिंदगी में हर्ट करे, ऐसा हो सकता है ना। इसलिए एक बंदे के साथ जब भी आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशन है किसी के साथ या कोई रिश्ता है किसी के साथ, तो जितना एडजस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है उस सिचुएशन को, उस बंदे को, और सबसे इम्पॉर्टेंट खुद को। आप क्या चाहते हैं? आप कई बार ही रिश्ते से निकलना चाहते हैं लेकिन आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते हैं, आप सिर्फ एडजस्ट करते जाते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इनका मिक्सअप जब होता है ना, तब लाइफ ब्यूटीफुल होती है, वो रिश्ता ब्यूटीफुल होता है। तो एडजस्ट कीजिए, लेकिन वहाँ कीजिए जहाँ करना सही है, राइट। और सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। खासकर उनके लिए है गाना जो लोगों को पहचानते हैं। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्थानी।

तो ये था आज का हमारा ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। बहुत सारी बातें आज हमने की, बहुत सारे किस्से यहाँ पर डिस्कस किए एंड आई होप कि आज के किस्सों, आज की बातों को आपने एंजॉय किया होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं अभी जो आपके साथ बांटनी है, आपके साथ करनी है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की एक सीमा होती है, और अभी अगर हमने और बातें की तो वो सीमा हम लांघ जाएंगे, मतलब हम उसके बियॉन्ड चले जाएंगे। ऐसा तो हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि आज करेंगे तो फिर कल मिलेंगे नहीं। स्टेशन हमसे कहेगा कि भाई तुम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है प्रोग्राम करने की, तो ऐसा तो नहीं चाहते ना, हम तो रोज़ मिलना चाहते हैं। इसलिए आज के प्रोग्राम को हम यहीं पर करते हैं वाइंड अप। इस वादे के साथ जा रही हूँ कि कल टाइम पर फिर से आपसे मुलाकात होगी आपके अपने इट हैपेंस के सफर में, और जब तक मैं आपसे मिलती हूँ तब तक यूं ही हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप बात रहिए। हैव अ ग्रेट डे।

काशकाल जी मैं हां संदेश आलोक शर्मा तुसी सुन रहे हो रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम से जिगड़ा हो चुके हैं हुण तक ते हम खबरां दा ता फिर चलो करते हैं शुरुआत। उधर एतवार नूं नागालैंड दे मोन जिले दी डिफेंस कलोनी विच जमीन खिसकण कारण घट्टो घट्ट 4 लोकां दी मौत हो गई। कई लोकां दे मलबे हेठां फसण दा खच्चा है। जमीन खिसकण कारण कई घर रुड़ गए। बचाव टीमां ने वड्डे पद्धर ते बचाव कार्य शुरू कर दिता। बचाव टीम दे इक अधिकारी ने दस्सिया कि जमीन खिसकण नाल कलोनी दे लगभग 15 घर बुरी तरह दे नाल प्रभावित होए। उधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुआंढी देश कैनेडा नूं एक बेहद सख्त धमकी दित्ती है। रिपोर्टा मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि जे कैनेडा ने अपने जंगलों विच लगन वाली अग दे कारण अमरीका वल आ रहे धुएं ते काबू ना पाया तां अमरीका कैनेडियन वस्तुओं ते भारी टैरिफ लगा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि कैनेडा दे जंगलों की अग दा धुआं सरहद पार करके अमरीका दे कई सूबियां विच हवा प्रदूषण नूं खतरनाक पद्धर ते पहुंचा रहा है। उन्होंने दोष लगाया कि कैनेडा सरकार अपने जंगलों का प्रबंधन सही तरीके नाल करन विच नाकाम रही है जिसका खामियाजा अमरीकी नागरिकां ते उद्योगां नूं भुगतना पै रहा है। ट्रंप मुताबिक टैरिफ धुएं कारण होए अमरीका दे नुकसान की भरपाई लई खर्चा जाएगा। उधर दूजे पासे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दियां सख्त इमीग्रेशन नीतियां दा असर हुण देखण नूं मिल रिहा है। ताजा जानकारी मुताबिक इस साल भारत तों अमरीका विच गैर कानूनी प्रवास विच तेजी नाल गिरावट आई है। अमरीकी सरहदी अधिकारियां ने वित्तीय साल 2026 दे मई महीने तक भारतीय प्रवासियां दे 20,614 एनकाउंटर दर्ज किते हन। यह गिनती वित्तीय साल 2023 दी इस म्याद नालों 69% घट है। साल 2023 विच भारत तों अमरीका विच गैर कानूनी प्रवास की सब तों वध गिनती देखण नूं मिली सी। 2023 विच अमरीकी सरहद ते भारतीयां दे 67,000 तों वध एनकाउंटर दर्ज किते गए सन। उधर जंगबंदी टुटण मगरों अमरीका ते ईरान विचाले एक बार फिर तो सीधी जंग शुरू हो गई है। दोवां पासियां तो हो रहे भयानक हमलिया कारण मिडिल ईस्ट विच हालत बेहद तनावपूर्ण बन गए ने। इस दौरान ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने संयुक्त अरब अमीरात नूं एक बेहद सख्त चेतावनी दी है। ईरानी मीडिया रिपोर्टा मुताबिक ईरान ने यूएई नूं अमरीका दा साथ देण दा अंजाम भुगतण लई तैयार रहण लई कह दिता है ते प्रमुख हवाई अड्डियां ते बंदरगाहां नूं तुरंत खाली करन दी वार्निंग दे दित्ती है क्योंकि ईरान ने वल्लों इन्हां टिकाणे स्ट्राइक की जा सकती है। ईरानी सुरक्षा सूत्रा मुताबिक यह चेतावनी अजे समय विच दिती गई है जदों अमरीकी फौज ईरान ते अगले वड्डे हवाई हमले दर्ज करन लई यूएई दी ताती एयरबेस या उत्थे मौजूद फौजी ठिकाने दी वरतों कर सकती है। ईरान ने साफ शब्दों विच कहा है कि जे अमरीका ने ईरान खिलाफ किसी भी तरह की कारवाई लई किसी भी खाड़ी देश की जमीन की वरतों की तां इस नूं उस देश नूं अमरीका दा सहयोगी मान के सीधा जवाबी हमला किया जाएगा। तो हूं तक हम खबरों में बस इना ही खबरों की वधेरे जानकारी है। सुझाव देने के लिए सा जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, सू ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल आई डी है brisoni@brisoni.com। इस ही फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकते हो। सा फेसबुक पेज है रेडियो ब्रिस्वानी 101 FM। फिर हाजिर होवोंगे ताजा तरीन खबर लेकर। तकली दे इजाजत, सत श्री अकाल।

आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए जी तुहाडे अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101 एम ते जी आर चे संदेश शौलक दे नाल तुसी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तो तुसी की गाणा है, तुसी जुड़ना है साडे नाल, तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रिसोनी 101 एम साडा फेसबुक पेज है, ते brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आईडी है। खैर तुहानूं पता ही है, बार फिर भी मैं हर रोज दस दिनी हुनी हां ताकि तुसी किते भुल ना जाओ जरा भी, ते जुड़दे रहो साडे नाल, रखो अपनी फरमाइशां, करो साडे नाल दिल दीआं गल्लां, ते मैं तां गाणे तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी ना। जरूर जरूर जरूर सुणाउंगी। तां चलो फिर तुसी इन्हां गीतां नूं इंजॉय करो, मैं हुणे वापस आई।

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसाने वन सर एम ते जी अज के संदेश अलग दिन बने हुए होप तुसी इन्हां गीतां नूं बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैगे हो ते इसे तरीके दे नाल सोहणे सोहणे गीत मैं अगे भी तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी नाले करदी रहूंगी गल्लां तां हुण गल्लां करिए ना जे आपां तां बॉलीवुड दे विच बहुत कुछ खास हुंदा हॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड तां मैनूं इंटरस्ट बॉलीवुड दे विच है क्योंकि बॉलीवुड दी फिल्मां इन्नियां सोहणियां आ रही हैगियां ना तां सोचा के तुहानूं भी दसां देखो पिछे चलदे हैगे आ 70s 80s 90s राजेश खन्ना तो लैके कुड़ियां दी दीवानगी किसी तो छुपी नहीं है जिस रास्ते चो लंघदे सीगे ना उथों दी धूल नाल कुड़ियां अपनी मांग भर लैंदियां सी राजेश खन्ना तो बाद धर्मिंदर अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना शत्रुघ्न सिन्हा ऋषि कपूर अते मिथुन चक्रवर्ती नूं भी दर्शकां ने खूब प्यार दिता पूरे तीन दहाकियां तक इन्हां सितारियां दा बॉलीवुड इंडस्ट्री विच जलवा रहा इस विचों सिर्फ दो स्टार्स दे बेटे बेटियां नूं ना इंडस्ट्री विच सफलता मिली है ते ओ सुपरस्टार ते उन्हां दे बेटे कौन ने उन्हां बारे दसूंगी तुहानूं पर पहला सुणाउनी है गीत

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वन एम ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो तो सब तो पहला गल करते हैं बॉलीवुड दे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना दी। ता देखो राजेश खन्ना दा असल नाम ना जतिन खन्ना सीगा। राजेश खन्ना दे चेतन आनंद दी फिल्म आखरी खत नाल उन्होंने बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सीगा। उन्होंने शक्ति सामंत की फिल्म आराधना फिल्म नाल रातों रात स्टारडम हासिल किया सीगा। ता राजेश खन्ना ने ना 1969 यानी कि 1969 तो लैके 1974 यानी कि 1974 तक 17 तो ज्यादा हिट फिल्मां दित्तियां सी। उन्होंने कटी पतंग इतफाक डोली बंधन दो रास्ते खामोशी ते द ट्रेन सच्चा झूठा सफर आनंद आन मिलो सजना अंदाज मर्यादा हाथी मेरे साथी महबूब ते छोटी भाभी वर्गियां हिट फिल्मां दित्तियां सीगियां। 1974 तो उन्हां दा डाउनफॉल शुरू होया सी। फिर उन्होंने 1980 के दहाके विच वापसी की। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया नाल 1973 विच ब्याह किया सी ते ब्याह तो बाद उन्होंने दो बेटियां ट्विंकल खन्ना ते रिंकी खन्ना होईयां सी। इन्हां बारे दसना है थोनू इन्हें दसना जरूरी हुंदा ना छोटियां छोटियां चीजां दसनियां बहुत ज्यादा जरूरी हुंदियां। बेटियां बारे दस दी पर पहले की सुन लो।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

जी अनुजी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसौनी 101.1 FM ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो, राजेश खन्ना दिया दोनों ही बेटियां ने बॉलीवुड विच किस्मत आजमाई, दोनों नू निराशा भी हाथ लगी। राजेश खन्ना की वड्डी बेटी ट्विंकल खन्ना ने 1995 विच बॉबी देओल दे नाल बरसात फिल्म नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सी। डेब्यू फिल्म तां सुपरहिट रही पर इस तों बाद आउण वाली मूवी फ्लॉप रही। ट्विंकल खन्ना ने जान दिल तेरा दीवाना, इतिहास, इंटरनेशनल खिलाड़ी, जुल्मी बादशाह, मीला वर्गिया फिल्मों विच काम किया सी। ट्विंकल दी भैन रिंकी खन्ना का करियर भी बॉलीवुड विच कुछ खास नहीं चल पाया। रिंकी खन्ना ने प्यार में कभी कभी, मुझे कुछ कहना है वर्गिया फिल्मों विच काम किया पर तकदीर नहीं बदली। ते फिर तकदीर जदो नहीं बदली ना ता फिर जल्दी ही उन्होंने बॉलीवुड तो विदा भी ले लिया ते ब्याह करवा लिया। ट्विंकल खन्ना ने जिते अक्षय कुमार दे नाल ब्याह कीता ता उधर रिंकी खन्ना ने बिजनेसमैन समीर सरन दे नाल ब्याह करवाया।

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 101.9 ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो हुण गल करदे हैं कि 70 ते 80 यानी कि 70s 80s दे दहाके दे सब तो वड्डे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन दी महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक ने 2000 रिफ्यूजी फिल्म नाल करीना कपूर दे नाल बॉलीवुड विच डेब्यू किया। जेबी दत्ता दे निर्देशन विच बनी यह फिल्म कुछ खास नहीं कमाल कर सकी। अभिषेक बच्चन के करियर की शुरुआत दी 14 फिल्मा फ्लॉप या डिजास्टर रही। उधर 2004 विच धूम फिल्म तो उन्होंने सफलता का स्वाद चक्या है। फिर बंटी और बबली, धूम टू, गुरु हिट रही, धूम 3, हैप्पी न्यू ईयर, हाउसफुल 3 वर्गिया मल्टी स्टारर फिल्मा विच उन्हां दा काम सराया गया, पर वह सोलो हिट देण विच फेल रहे। अभिषेक बच्चन भी अपने पिता वर्गे स्टार नहीं दोहरा पाए, पर अज भी स्ट्रगल कर रहे ने।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सिखियां।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ ऑगस्ट 2026, एवरीवन इन ऑस्ट्रेलिया विल बी काउंटेड। दिस इंक्लूड्स सिटीजंस, परमानेंट रेजिडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टेंपरेरी वीजा होल्डर्स एंड विजिटर्स। यू कैन टेक पार्ट ऑनलाइन, ऑन अ पेपर फॉर्म और विद हेल्प इफ यू नीड इट। Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare and transport. When you take part, you help make sure your language, culture and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.

जितेंद्र दे बेटे ने तुषार कपूर उन्हां दी गल करदे आं। तुषार कपूर ने बॉलीवुड विच मुझे कुछ कहना है दे नाल डेब्यू कीता सी। पहली फिल्म तां सफल रही पर फिर किस्मत ने साथ नहीं दिता। तुषार कपूर की एक्टिंग भी दर्शकों लुभा नहीं सकी। क्या दिल ने कहा जीना सिर्फ मेरे लिए कुछ तो है ते ये दिल गायब खाकी क्या कूल है हम गोलमाल लव स्टोरी क्या लव स्टोरी है शूट आउट एट लोखंडवाला बहुत सारिया फिल्मा कीतिया पर कोई फिल्म कमाल नहीं दिखा सकी। मल्टी स्टारर दे विच उन्हां नूं सराया गया पर उही गल ना अपने दम ते ओ वी सोलो हिट नहीं दे पाए ते जल्द ही ओ साइड हीरो बन के रह गए।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੁਹਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ।
1: यस वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101.1 ते जी आर चे संदेश चालक दिनाल तुसी बने होयो। देखो जितेंद्र दी एक टीवी हैगी है, बेटा नहीं कमाल कर सकिया, बेटी ने कीता हैगा एकता कपूर। जी हाँ, एकता कपूर टीवी दी दुनिया दी क्वीन कहलाई जांदी है। उन्होंने तुषार कपूर तो ज्यादा उन्होंने सफलता मिली है। उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म कंपनी के बैनर तले एक तो वध के एक सीरियल प्रोड्यूस किए। एकता कपूर ने हम पांच, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, कुसुम कहीं तो होगा, कसम से पवित्र रिश्ता बड़े अच्छे लगते हैं, ते जोधा अकबर वर्गे कई सीरियल्स बनाए। तुषार कपूर ते एकता कपूर ने ब्याह नहीं किया। तुषार कपूर जो 2016 विच सैरोगेट से ते आईवीएफ के जरिए एक बेटे के पिता बने, सिंगल फादर बने। तुषार ने अपने बेटे का नाम लक्ष्य रखा है। तुषार कपूर की भैन एकता कपूर ने भी 27 जनवरी 2019 विच सैरोगेसी के जरिए बेटे रवि कपूर ने जन्म दिता। सिंगल मदर बनी उन्होंने अपने पिता जितेंद्र के असली नाम ते बेटे का नाम रखा।

जी आरू जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी वन सरो वाले ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से पड़े हुए हो देखो 70s 80s दे सुपरस्टार्स दे विच सिर्फ धर्मेंद्र ही क्लॉक ते अजे हे स्टार है कि ने जिन्ना दे बड़े बेटे सनी देओल दा करियर बेहद सफल रहा। सनी देओल ने 1983 दी बेथा फिल्म नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सी। फिर अर्जुन घायल दामिनी घातक बॉर्डर गदर एक प्रेम कथा गदर टू बॉर्डर टू वर्गियां ब्लॉकबस्टर फिल्मां दित्तियां। सनी देओल ने अपने दम ते सोलो हिट दित्तियां ने। उधर उन्होंने भरा बॉबी देओल ने करियर की शुरुआत 1995 विच बरसात फिल्म नाल कीती सी। मूवी सुपरहिट रही फिर सोल्जर गुप्त वर्गियां हिट फिल्मां दित्तियां पर इस तों बाद उन्होंने नसीब उन्हां तों गुस्से हो गया। बॉबी ने फ्लॉप फिल्मां दी लाइन चुन ली। पूरे 15 साल फ्लॉप करियर का दौर चुनिया। 2019 विच उन्हां दी किस्मत पलटी ते ओ नेगेटिव रोल्स करन लग गए। एनिमल मूवी विच उन्हां दा छोटा जिहा रोल दर्शकां दे दिल नूं छू गया।

0: मिक्सिंग इन द हाउस हाउस।
1: देखो वेड़ा हो चुका है थोड़े तो इजाजत लेने का, पर एक हो सुपरस्टार की गल करनी रह गई सी, तो सोचा उन्हों की गल भी जरूर कर ला। उन्हों की गल कर लैनी है जी। तो सुपरस्टार ऋषि कपूर 1973 आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी दे नाल डेब्यू किया। उन्होंने अपने करियर दे विच बहुत शानदार फिल्मां दित्तियां सी। अपनी छवि चॉकलेटी रही हैगी उन्हां दी। ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर ने अपने पिता की विरासत नूं अगे संभाल लिया है। वह अपने पिता नाल तो दो कदम अगे निकल गए। रणबीर कपूर ने 2007 सावरिया मूवी दे नाल डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप रही पर उन्होंने संघर्ष किया, फिर बहुत सारिया फिल्मा कीतियां, ब्लॉकबस्टर रही। रणबीर कपूर के टैलेंट से कामयाबी से पूरी इंडस्ट्री ने मान ली हैगी, असी भी मान गए हैगे। तां इह कुछ सितारे हैगे ने, उन्होंने बच्चे ने जिन्होंने की किया थानू दस्या है। बाकी तुसी की किया सारा दिन, तुसी जरूर दस्या करो, साडे नाल जुड़ते रह करो। रेडियो बरसोनी 107.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, बरसोनी @bersoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा भी अपना लो, साडे नाल पता जरूर करते रह करो। बाकी अपना ख्याल रखिया करो, ते मैं तां इही कहना कि कल करांगे मुलाकात। रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है, इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
2: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
1: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: चलो जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट।
0: ओके तुम आ रही हो?
1: मैं जा।
0: लगता रूम में रह गई।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं,

आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। मंडे का दिन है और अब बहुत सारी गपशप करने हम आपसे आ गए हैं। भाई वीकेंड के बाद रिचार्ज हुए आप अच्छे से या नहीं? हाँ बताइए। ऑफकोर्स रिचार्ज होना बनता है और रिजुविनेट होना भी बनता है और वीकेंड आपके लिए वही करता है। तो वीकेंड के बाद जो है वो एकदम मजे से और बहुत ही अच्छे से बाउंस बैक हमें करना चाहिए इस वीक के प्रोडक्टिविटी के लिए, बिकॉज दैट्स व्हाट वी नीड। जी हाँ, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, अपने लिए अच्छी लाइफ क्रिएट करने के लिए काम तो करना पड़ेगा। अब काम अच्छे से भी किया जा सकता है और थोड़ा सैड सैड रह के भी किया जा सकता है। चॉइस इज योर्स। मैं हमेशा कहती हूँ कि काम को अगर करना चाहते हो तो अच्छे से कीजिए, खुशी से कीजिए और फिर देखिए वो काम आपको कैसे रिवॉर्ड करता है। जी हाँ, सो दैट्स अबाउट इट। इसी के साथ अब जरा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और वो होती है एक हेल्दी रिचुअल के साथ, विच इज डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। जी हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैन रियली रियली मेक यू फील सो मच बेटर। यू नो, ये केओस एंजाइटी कुछ भी आपके आजू बाजू नहीं आएगा अगर आप डीप ब्रेथ एक्सरसाइज करोगे। तो आइए सबसे पहले वही करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ ऐसे ही अच्छा फील करते करते शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। जी हाँ, गाना बहुत ही खूबसूरत है, विशाल शेखर ने इसे बनाया है और इसे सनम पुरी और नीति मोहन ने गाया है और ये गाना सच में बहुत ही खूबसूरत है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का गाना फकीरा आप सबके लिए।

उसी के साथ जरा बात कर लेते हैं मौसम के बारे में। सबसे पहले मौसम क्या कह रहा है, वेदर क्या कह रहा है, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत तो हो चुकी है। अब वेदर की बात अगर पता चल जाए तो हम अपनी बाकी की प्लानिंग कर लें। जी हाँ, क्या होने वाला है इस हफ्ते। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के मौसम की। तो 21 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, और वहीं अगर बात की जाए अभी की तो 19.5 डिग्री सेल्सियस के करीब है टेम्परेचर, बट फील आपको हो रहा है 17.8 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको ठंडा ठंडा फील हो रहा है। जी हाँ, इसी के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी भी मैं देख पा रही हूँ।

और ये बूंदाबांदी जो है वो 5 बजे के करीब तक ही रहेगी, उसके बाद जो है मुझे क्लियर मौसम दिख रहा है। बादल ऑल्दो रह सकते हैं आसमान में, बट बारिश मुझे इसके बाद नहीं दिख रही है। और इसी के साथ ये है दिन का हाल। रात की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप रात में देख पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, 17 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे रात को। और अगर बात की जाए यहाँ पर कल की, तो ट्यूसडे की, तो 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 50% चांसेस है बारिश के, जो कि 1 mm तक बारिश हो सकती है, मतलब कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है और इसमें कुछ फेर बदल भी हो सकते हैं क्योंकि ये मौसम है और मौसम अनप्रिडिक्टेबल है। जी हाँ, एयर क्वालिटी की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी है एकदम फेयर। और वहीं वेडनेसडे की अगर बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 30% चांसेस बारिश के मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बट उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। सो ये है मौसम का हाल आज का और अगले 2 दिन का। देख लीजिए आपको क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पर हमारी तरफ से एक और जबरदस्त सा गाना आप सबके लिए।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ अगस्त 2026 Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 107.1 AM, चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। तो दोस्तों इवनिंग और वाइब दोनों ही ऑलमोस्ट आ गए हैं। वाइब बन गई है इवनिंग। तो आप रेडी हो किस चीज के लिए? वेल ऑफ कोर्स आपके फेवरेट हमारे इस प्रोग्राम में फरमाइश करने के लिए, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। जी हाँ, कि मतलब एक ही तरफ से जा रहा है, मतलब हम ही आपके लिए गाने प्ले, आप भी अपने मन पसंदीदा गाने जो हैं वो यहाँ पर प्ले करवा सकते हैं हमसे, और यही खासियत है इवनिंग वाइब की। जी हाँ, सो व्हाट यू गोना डू इज आप अपना फोन उठाने वाले हैं और एक नंबर आपको डायल करना है, और वो नंबर है +91 8288 7170 1। आई रिपीट, +91 8288 7170 1। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं किसी को स्पेशल फील करवाना, उन्हें कुछ गाना, कोई खूबसूरत सा गाना डेडिकेट कर, तो आप वो भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये सारी की सारी अच्छी चीजें आप कर सकते हैं। नंबर आपके पास आ गया है, बस आपको डायल करके कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू हम तक अपनी फरमाइश या डेडिकेटेड सॉन्ग पहुंचाना है। एंड दैट्स इट। उसके बाद आपकी आरजे निविया यहाँ से पूरा का पूरा काम संभाल लेगी, एंड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जब तक आप अपनी फरमाइशों को हम तक पहुंचा रहे हो, हमारी तरफ से एक और बहुत ही बढ़िया सा गाना आप सबके लिए अपने मूवी का, और हिमेश रेशमिया का ये गाना जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट्स भी है। सो ऑफ कोर्स ऑल द मोर रीजन टू प्ले द सॉन्ग, एंड सुनते हैं इसका और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अब हमने ऑफकोर्स शुरुआत तो प्रोग्राम की कर दी है, लेकिन गपशप की शुरुआत और चीजें क्या क्या हुई हैं इस वीकेंड। वेल, सबसे बड़ी चीज तो यही हुई है कि फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हो चुका है एंड वी हैव द विनर, वी हैव द वर्ल्ड चैंपियन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेन। यस, स्पेन अबलितो एसो पीतो। जी, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, ये स्पेनिश तो नहीं लग रही। अरे, ये स्पेनिश एग्जैक्टली नहीं है, बट ये मेरा वर्जन ऑफ स्पेनिश है। सो अगेन, यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर वर्जन ऑफ फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन और एनी अदर यू नो प्लेस। सो अगर आपको समझ नहीं भी आती है ना, तो भी जो थोड़ा बहुत आपको समझ आता है वो जोड़ तोड़ के बोलना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ऐसे ही तो हम सीखते हैं चीजों को। सो आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, इससे पहले तुम और गड़बड़ बोलो, आप पते की बात करो। चलिए ठीक है, पते की बात यही है कि स्पेनिश लोग जो है वो इतने ज्यादा खुश हैं कि जो खुशी वो रोड्स पर मतलब उतर उतर कर मना रहे हैं। लेकिन पीपल आर लाइक गोइंग क्रेजी। लमी या माल हो या कोई भी हो, सबके सब प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। क्यों नहीं खुश होंगे भाई, उन्होंने अर्जेंटीना को हरा दिया है, लास्ट वर्ल्ड कप चैंपियंस को उन्होंने हरा दिया है, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस थे इस वर्ल्ड कप में। और अर्जेंटीना से बहुत सारे लोग जो है वो नाराज भी थे, ऑफकोर्स इजिप्ट के साथ उनके मैच के बाद, और ऑफकोर्स इंग्लैंड के साथ भी उनके मैच के बाद। सो या नाराजगी अब पूरी हो गई है, क्योंकि स्पेन ने फाइनली अर्जेंटीना को हरा दिया है, धूल चटा दी है। नाउ आई एम फीलिंग फॉर मेसी, बट द थिंग इज कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर स्पेन, बिकॉज स्पेन ने प्रूव कर दिया है कि कैसे अगर आप पहले से ही जबरदस्त खेलते आ रहे हो, तो आप कैसे मतलब आगे आगे चलकर खतरनाक खेलने वाले हो। इमेजिन कितने खतरनाक टीम्स को उन्होंने बाहर निकाला। उन्होंने पोर्चुगल को बाहर निकाला, उन्होंने सब बड़ी बड़ी टीम्स को बाहर निकाला, मतलब लिटरली, और वो खुद भी बहुत बड़ी टीम है। सो या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू स्पेन एंड ऑल द स्पेनिश पीपल आउट देयर एंड ऑल द पीपल हु वर सपोर्टिंग स्पेन, बिकॉज या आई नो यू मस्ट बी वेरी हैप्पी एंड यू मस्ट बी वेरी सेलिब्रेटिंग। सो अपनी पार्टी का न्योता हमें भी भेज दीजिएगा, बिकॉज हम भी आने के लिए रेडी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने स्पेन को को हमेशा से सपोर्ट किया था, उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया था, बट आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर देम, बिकॉज या दे आर द विनर्स एंड विनर्स आर द विनर्स। या दैट्स इट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है।

उसी के साथ यहाँ सर एक और बहुत बड़ी खबर जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, और वो है कि इसरो यानी कि जो भारत की जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है उसके साइंटिस्ट यानी कि 100 से ज्यादा साइंटिस्ट जो है वो रिजाइन कर चुके हैं अभी कुछ महीनों में। आप लोग बोलोगे कि अच्छा बट क्यों? वेल वो इसलिए क्योंकि उनकी कुछ डिमांड्स हैं और वो डिमांड्स गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही है, तो उन्होंने मास रेजिग्नेशन जो है यहाँ पर दे दिया है। अब आप लोग बोलोगे कि बात तो सही है, मतलब अगर गवर्नमेंट जो है वो उनकी देखरेख नहीं कर रही है तो कोई और गवर्नमेंट कोई और कंट्री करेगी, राइट? अगर कंट्री उनकी देखरेख नहीं कर रही है तो कोई और कंट्री करेगी। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसरो के अंदर भी नासा आके बढ़ जाएगा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसरो के साइंटिस्ट जो है वो यहाँ वहां जा रहे हैं क्योंकि उनको बेटर पे चाहिए, उनको बेटर फैसिलिटीज चाहिए, और ये चीज इंडिया की गवर्नमेंट उनको नहीं दे पा रही है अपेरेंटली, अगर आप जो सोर्सेज की जो है वो माने तो। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा गलत है। वेल गलत तो है ही, क्योंकि ऐसे हम कहते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ स्पाइसेस। नो, आई वुड से इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टैलेंट्स। जी हाँ, किसी भी कंट्री को नया सीईओ चाहिए, हमारे पास एकदम नया माल मिलेगा, लिटरली मतलब फ्रेश माल मिलेगा। दैट्स हाउ पीपल लीव इंडिया एंड गो टू अनदर कंट्रीज। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं करी, गवर्नमेंट जो है वो बहुत कुछ कर रही होगी, लेकिन जो चीजें उन्हें चाहिए है, जो फैसिलिटीज उन्हें चाहिए, जो पे उन्हें चाहिए, वो कोई और कंट्री या कोई और स्पेस एजेंसी अगर उन्हें दे रही है तो फिर यहाँ पर उनके पास बहुत कम रीजंस बचते हैं अपनी ही कंट्री के लिए काम करने के लिए। बट अगेन आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं भाई शर्मा, कुछ तो पेट्रियोटिज्म भी होता है, या आई एम गोना से कि कुछ तो पेट्रियोटिज्म भी होता है और कुछ लोग अपनी कंट्री के लिए ही काम करना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, बट यहाँ पर उन लोगों की बहुत ज्यादा कमी है। और 100 से ज्यादा साइंटिस्ट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप ए साइंटिस्ट, जी हाँ, जो टॉप टेक्निकल साइंटिस्ट होते हैं ना उनकी बात हो रही है, वो 100 से ज्यादा जॉब वो छोड़ गए। एंड गेस व्हाट, अब जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि इनके रेजिग्नेशंस लेने ही बंद कर दो, मतलब उनको लपेटे में ले लो, उनको जाने ही मत दो। वाह, पहले उनसे उनकी फ्रीडम छीनी गई और अब उनसे उनका रेजिग्नेशन देने का हक भी छीना जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट द थिंग इज कि ये चीज वायरल बहुत ज्यादा हो रही है, और अगर ये वायरल हो रही है तो गेस व्हाट, उन टॉप ए जो ग्रुप ए टेक्निकल साइंटिस्ट को कौन लेने के लिए तैयार है? वेल ऑफ कोर्स दूसरी कंट्रीज, बिकॉज एवरीवन लव्स टैलेंटेड पीपल, राइट? यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
12: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
13: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
14: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
13: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
14: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
13: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
14: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
15: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006666।
14: मतलब रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
13: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
14: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
15: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर।

0: है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
1: जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ हस्बैंड वाइफ में कॉन्वर्सेशन हो रही थी, और कॉन्वर्सेशन नहीं बहस हो रही थी, बहस कहेंगे तो सही रहेगा। सो कॉन्वर्सेशन हो रही थी और फिर वो बहस भी चेंज हो जाती है, और फिर एकदम से जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बोलता है, यू नो व्हाट, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली। तो वाइफ सामने से बोलती है, ओ रियली, ओ रियली, इफ यू आर द हेड ऑफ द फैमिली देन आई एम द नेक ऑफ द फैमिली एंड आई टर्न हेड। जी हाँ, नेक जो है वो हेड को टर्न करती है, एंड आई एम द नेक ऑफ द फैमिली। या यू बीइंग हेड ऑफ द फैमिली जो है उसको चेंज जो है वो मेरी तरह से ही होना पड़ेगा, उसको घूमना तो मेरे ही इशारों पर पड़ेगा, क्योंकि आई एम द नेक ऑफ द फैमिली। और उसके बाद हस्बैंड बेचारा जो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, वो जो बहस हो रही होती है, उसे उधर ही हार जाता है। जी हाँ, उसके बाद उसे लगता है, अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, मैंने कह दिया आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, लेकिन मेरी बीवी सामने से बोल रही है आई एम द नेक ऑफ द फैमिली, अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, क्योंकि नेक तो सच में हेड को टर्न करती है। सो आई मीन आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अ माइक ड्रॉप मोमेंट फॉर माई वाइफ, एंड That's how ये कॉन्वर्सेशन, ये बहस जो है वो खत्म हो जाती है। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर आप लोगों को कोई ये कहे कि आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, मुझे लगता है कि आपको भी ये ट्राई करना चाहिए, देन आई एम द नेक ऑफ द फैमिली। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जान जान के मिलती है तू अक्सर, पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर। टॉप टू बॉटम मार्क्स तुझे दिए मैंने 10 out of 10, क्यों नहीं चाहिए चल ओके देन। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली तू, कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल्ली तू, मैं ही बचाऊंगा तुझको दुनिया।

जी हाँ दोस्तों, आरसी के साथ बहुत ही बम्पर बम्पर ओपनिंग मिली है द ओडिसी को। जी हाँ, मैंने आपको रेकमेंड किया था ओडिसी को बहुत ज्यादा और आज हम उसका रिव्यू करने वाले हैं फुल। जी हाँ, तो क्रिस्टोफर नॉलन लेकर आए हैं अपनी एक नई मूवी विच इज सेट टू बी इन द टाइम लाइन ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी और स्पार्टन्स, और ये वो वाला टाइम था जब रोमन्स जो है वो रूल करते थे। बट इट्स नॉट एग्जैक्टली रियलिटी बिकॉज इट इज काइंड ऑफ माइथोलॉजी, इट्स मिथ। सो या मिथ के साथ जो है वो आपको ग्रीक गॉड्स की तरफ लेकर जाने की कोशिश की गई है। नाउ यहाँ पर आपने और भी बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जो कि ग्रीक गॉड्स पर बनी है, जो कि रोमन हिस्ट्री पे बनी है, स्पार्टन्स पर बनी है, ग्रीक्स पर बनी है। बट दिस मूवी इज ट्राइंग टू शो यू अ पर्टिक्युलर फेज ऑफ द ग्रीक माइथोलॉजी और द स्पार्टन हिस्ट्री। एंड हेलन ऑफ ट्रॉय यानी कि ट्रोजन वॉर के बाद की सिचुएशन के बारे में बताया गया है। और क्रिस्टोफर नोलन का फेवरेट टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया है विच इज होम कमिंग। जी हाँ, मतलब होम कमिंग, कोई बंदा जो है वो घर जाने की कोशिश कर रहा है एंड दैट्स व्हाट हिज फेवरेट टॉपिक इज ऑलवेज अबाउट। जी हाँ, फिर चाहे वो इंटरस्टेलर हो, फिर चाहे द मार्शियन हो, फिर चाहे ये वाली हो, और भी बहुत सारी मूवीज हैं जहां पर क्रिस्टोफर नोलन जो है वो अपने कैरेक्टर्स को घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं और वो जर्नी को ही मूवी में तब्दील किया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मूवी। यहाँ पर द ओडिसी जो है वो क्रिस्टोफर नॉलन ने बनाई है। अगर स्टार कास्ट की बात करें तो एक एक बंदा इसमें बहुत ही जबरदस्त है। फिर चाहे हम बात करें सेंट्रल कैरेक्टर यानी कि मेन कैरेक्टर मैट डेमन की, जो कि ओडिसियस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। फिर चाहे हम बात करें उनके बेटे टॉम हॉलैंड टिमोलकी की और उनकी वाइफ पेनेलोपे जो कि एन हाथवे हैं। और अगर बात करें जो विलन्स हैं, जी हाँ, विलन में रॉबर्ट पैटिंसन जो है वो मेन विलन आपको नजर आएंगे। इसके अलावा आपको जेंडेया एज अ गॉडेस ऑफ वॉर एथिना के कैरेक्टर में नजर आएंगी, आपको लुपिटा नियांग एज अ हेलन ऑफ ट्रॉय नजर आएंगी। जी हाँ, अब यहाँ पर जो है वो स्टोरी वही है कि मैट डेमन जो है वो ट्रोजन वॉर के बाद जो है वो घर जा रहे हैं, लेकिन वो घर जाते जाते ऐसे गुम होते हैं कि उनको घर पहुंचने में ही 10 साल लग जाते हैं। 10 साल ट्रोजन वॉर में लगते हैं और 10 साल उनको घर वापसी में लग जाते हैं। और उसी 10 साल में क्या क्या होता है उसी पर ये कहानी है। जी हाँ, अब अगर मैं कहूँ कि इसमें जो फैंटेसी वाला पार्ट है वो कितना स्ट्रांग है, वेल इट इज गुड, इट इज वेरी गुड। और अगर मैं कहूँ कि इसमें एक्टिंग वाला पार्ट कितना स्ट्रांग है, एक्टिंग वाला पार्ट भी काफी स्ट्रांग है। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिटल बिट मोर, यू नो, अच्छा थोड़ा और मतलब फैंटेसी में, या थोड़ा और जो है जो वॉर वाले फ्रंट पे अगर वो कुछ और ज्यादा दिखा सकते तो हमें अच्छा लगता है। जी हाँ, मतलब उन्होंने ट्रोजन वॉर के भी कुछ जो है वो क्लिप्स दिखाई हैं, उन्होंने और भी चीज़ों की कुछ क्लिप्स दिखाई हैं, लेकिन उसको और भी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रोवाइज किया जा सकता था, जो कि मुझे लगा कि क्रिस्टोफर नॉलन उतने अच्छे से नहीं कर पाए हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्टोरी टेलिंग, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर हॉलीवुड हैज। बट द थिंग इज कि यहाँ पर ग्रीक माइथोलॉजी और हिस्टोरिकल और पीरियड, जब पीरियड पर ऐसी कोई फिल्म बनती है तो उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। तो उस मामले में एक्शन के मामले में थोड़ा ज्यादा हो सकता था, कुछ जो है वो एक्शन सीन्स जो है वो चेंज किए जा सकते थे, डिफरेंट तरीके से सोचे जा सकते थे। बट देन अगेन इट इज अ माइथोलॉजी एंड ये ऑलरेडी एक स्टोरी है, उस पर इसे बनाया गया था और क्रिस्टोफर नॉलन उसके साथ जस्टिस करना चाहते थे। आई गेस दैट इज वाई उन्होंने कुछ भी अपने एलिमेंट्स इसमें ज्यादा ऐड नहीं किए। बट द थिंग इज कि यहाँ पर कुछ तो इम्प्रोवाइज जो है वो किया जा सकता था। सो या मूवी जो है वो 3 घंटे लंबी है, यानी कि 2 घंटे 55 मिनट की ये मूवी है। और इसमें आपको बीच में ऐसा फील होगा कि ओके, मतलब मूवी जो है वो जा रही है, थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। बीच में आपको लगेगा कि ओके, मतलब अब इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपको लगेगा कि ओ माय गॉड नाउ दिस इज द पीक मोमेंट। बट आपको लगेगा बाद में कि नहीं, ये इतना पीक मोमेंट था नहीं जितना ये हो सकता था। सो या वो वाली चीजें आपको लग सकती है। अदरवाइज आई वुड से इट्स 8.5 out of 10, विच कुड हैव बीन 10 out of 10 अगर वो वाले पार्ट्स को ये इम्प्रोवाइज कर देते क्रिस्टोफर नॉलन। अदर देन दैट आई थिंक मूवी इज ग्रेट एंड यू शुड गो फॉर इट। एंड अगर आप इसे देखने जा रहे हैं तो डू लेट मी नो। एंड या दैट्स अबाउट इट फॉर द रिव्यू ऑफ द ओडिसी। एंड यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह! इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
6: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
5: अरे वाह, इनका पता बताना.
6: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
7: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
8: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
9: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
8: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
9: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
10: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां की उपलब्धता नाल हुंदी है. ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
11: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 107.1 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों अब जरा चलते हैं खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, खबरों की दुनिया की तरफ चलने से मेरा मतलब है कि दुनिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है और क्या हो रहा है पॉलिटिकल फ्रंट पर। वी आर गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग। जी हाँ, तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं भारत से ही, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हलचल चल रही है। तो सीजेपी के संसद मार्च से पहले जंतर मंतर में माहौल जो है वो गर्म हो गया था और इसमें बहुत सारे बड़े बड़ी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। जंतर मंतर पर 23 दिन बाद खत्म हुई आईसा के 3 छात्रों की भूख हड़ताल, उसके लिए भी बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचे थे। इनफैक्ट शबाना आजमी भी उन छात्रों का सहयोग देने के लिए वहां पर पहुंची थी। आपको मैं बता दूं कि जंतर मंतर जो कि दिल्ली में है, उसमें जो है एक प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें सोनम चुंग जो है उसको लीड कर रहे थे, उसको कॉकरेज जनता पार्टी के लीडर जो है वो भी लीड कर रहे थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुंग की जो है हड़ताल अब खत्म कर दी गई है, उनको वहां से जो है वो हटा दिया गया है। लेकिन यहां पर लोगों का जो कहना है, लोगों की जो अपील है कि कैसे इतनी सारी मेहनत, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होगा, मतलब स्टूडेंट जो कि मेडिकल एग्जाम्स देना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उसका एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हो जाने से उन लोगों के साथ कितना गलत हुआ है। आपको मैं बता दूं कि ये शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर जो कि इंडिया के हैं, उनका इस्तीफा मांगने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं और ये मार्च भी उसी के लिए हो रहा है। ये सारी चीजें जो हैं वो उसी के लिए हो रही हैं, लेकिन क्या ये हो पाएगा? वेल लेट्स सी। यहां पर क्योंकि जो प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और जो सोनम वांगचुंग थे उनकी सेहत पर जो है वो काफी असर पड़ा है। वो सफदरगंज अस्पताल में जो है वो भर्ती करवा दिए गए हैं और यहां पर जो है वो अभी भी एजुकेशन मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनका इस्तीफा जो है वो नहीं मिला है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं जो कितनी मेहनत करते हैं और मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके साथ ज्यादा गलत ना हो, इसीलिए ये लोग जो है इस प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

के साथ स्पेन ने वर्ल्ड कप किया, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल की सिर्फ इतनी ही हाइलाइट्स नहीं थी, हाइलाइट्स बहुत सारी हैं। जी हाँ, न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में हुआ ये फीफा वर्ल्ड कप का फिनाले, स्टार स्टडेड था। जी हाँ, जेकब एलॉडी, केंडल जेनर, बैड बनी, मार्गो रॉबी, बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे थे और वहां का हाफ टाइम शो भी स्टार स्टडेड था। जी हाँ, ऑफकोर्स व्हेन इट कम्स टू फीफा, व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल, इनको सबसे ज्यादा प्यार तो शकीरा से ही है। तो शकीरा ने परफॉर्म किया और आप लोग बोलोगे कि हाफ टाइम शो अब फीफा में भी होने लग गया। वेल, आई थिंक इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था एंड आई थिंक इट्स द फर्स्ट एंड लास्ट हाफ टाइम शो एवर इन द हिस्ट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। वी डोंट नो आगे कभी फिर से अमेरिका में अगर फीफा वर्ल्ड कप होता है तो आगे होगा या नहीं होगा, बट द थिंग इसकी इस बार हुआ और इस बार आपको ना सिर्फ शकीरा, ना सिर्फ मडोना, बल्कि बीटीएस भी दिखे। यानी कि बीटीएस वही बॉय ग्रुप जो कि साउथ कोरिया का बहुत ही ज्यादा फेमस बॉय बैंड ग्रुप है और उनको देखकर लोग जो हैं उनकी आंखें चौंधिया गई, उनको ऐसा लग रहा था कि वाओ, फीफा वर्ल्ड कप की टिकट में उन्हें फाइनल के साथ साथ बिग हिट, यानी बिग हिट म्यूजिक के वो बॉय बैंड ग्रुप भी नजर आ गया, जिसके लिए उनको टिकट्स भी नहीं मिलती है। जब भी बीटीएस परफॉर्म करता है उनकी टिकट्स लेना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर चाहे वो किसी भी कंट्री में क्यों ना परफॉर्म करे। जी हाँ, सो ऐसे में बहुत कुछ मिला लोगों को देखने के लिए, ऑल्दो टिकट्स जो है वो बहुत ज्यादा महंगी थी, एंड ऑल क्रेडिट टू ऑफकोर्स अमेरिका। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं इससे। जी हाँ, ऑफकोर्स हम डोनाल्ड ट्रंप को रोस्ट करने वाले हैं, सो ट्रंप रोस्टिंग सेशन में वी आर गोना टेल यू अबाउट क्या हुआ है और क्या उन्होंने कहा है आगे, और या दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बट द थिंग इज कि अगर आपने फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं देखा है तो उसके हाइलाइट्स अभी देखिए, बिकॉज Literally, it was one of the best World Cups out there. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से सुनो।

जी दोस्तों, इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं मिस्टर ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप बहुत कुछ कर रहे हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ट्रंप पहुंचे थे न्यू जर्सी, ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क में, और यहाँ पर उन्होंने ट्रॉफी जो है वो प्रेजेंट की स्पेन को, साथ में फीफा के चेयरपर्सन के साथ मिलकर। जी हाँ, और इनफैक्ट ट्रंप को फीफा इतना अच्छा लगा है कि उन्होंने फीफा के चेयरपर्सन को कहा है कि यू नो व्हाट, आपको फिर से आना चाहिए, हमें फिर से फीफा दो। ऑफकोर्स उनको फीफा चाहिए, क्योंकि जितना रेवेन्यू जनरेट किया है यहाँ पर अमेरिका ने फीफा की वजह से, वो तो मतलब आपको पता ही है। जो इतनी महंगी महंगी टिकट्स, मतलब सब लोग कह रहे थे कि इतनी महंगी महंगी टिकट्स इस बार फीफा वर्ल्ड कप की गई है कि नॉर्मल लोग तो सोच भी नहीं पा रहे थे उस मैचेस को, उन मैचेस को देखने का, फीफा वर्ल्ड कप का पार्ट बनने का, बिकॉज इट वॉज सो एक्सपेंसिव। ऑल क्रेडिट्स टू अमेरिका। जी हाँ, लेकिन इस बार अमेरिका ने कहा है कि हम फिर से चाहेंगे फीफा को होस्ट करना, बट हम चाहते हैं कि इस बार आप मेक्सिको और कनाडा को बाहर निकाल देना, सिर्फ हमसे इसे होस्ट करवाना। जी हाँ, या दैट्स व्हाट ट्रंप सेड। और आप सोच रहे होंगे कि ओके, तो फीफा के चेयरपर्सन ने क्या कहा। वेल, फीफा के चेयरपर्सन क्या कहेंगे, क्योंकि अभी जो अगला फीफा वर्ल्ड कप है उसे स्पेन, मोरक्को जो है, और एक और कंट्री जो है वो साथ में होस्ट करने वाली है। उसके बाद अगला वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो ऑलरेडी बुकड है सऊदी अरेबिया के द्वारा, और उसके अगला वाला जो वर्ल्ड कप है उसके बारे में जो है वो कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ पर ट्रंप जो है उनकी भूख जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कितना ज्यादा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर जनरेट हुआ फीफा की वजह से, वो जो महंगी महंगी टिकट्स जो है वो फीफा ने बेची, और ऑफ कोर्स अमेरिका के साथ मिलकर उन्होंने उसे बेचा। लोग, आम लोगों को देखने का मौका भी नहीं मिला फीफा वर्ल्ड कप को, तो अब दोनों ही ये मनी हंग्री है। अब मुझे समझ आ गया है कि फीफा वर्ल्ड कप के जो चेयरपर्सन है और डोनाल्ड ट्रंप की क्यों बनती है, क्योंकि दोनों को ही पैसा बहुत पसंद है और दोनों ही बहुत ज्यादा लालची हैं, तो दोनों ही स्कीम बना रहे थे कि अगली बार लोगों से पैसा कैसे लूटा जाए। सो या दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। बट द फनी थिंग इज कि यहां पर फीफा वर्ल्ड कप कहता है कि ठीक है, अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को होस्ट करेगा, तो हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे। आप लोग बोलोगे वाओ, दिस इज सो फनी। या दैट्स व्हाट फीफा चेयरपर्सन सेड, कि चाइना और अमेरिका को होस्ट करना चाहिए फीफा। आप लोग बोलोगे कि है, ये इतने दूर दूर है, ये कैसे मतलब कैसे चलेगा, क्योंकि मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका इसलिए साथ में होस्ट कर पाए क्योंकि वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं इसलिए। पर चाइना और अमेरिका, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। आप लोग बोलोगे कि अच्छा ठीक है, पहले हमें लगता था कि एक ही दिमाग से सटका हुआ इंसान है और वो है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि फीफा का चेयरपर्सन भी वैसा ही है। अगर आप उस इंसान की शक्ल देखोगे ना, आपको ये लगेगा कि हाँ बात तो सही है, ये कहीं दूर का भाई ही है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसको पैसा पसंद है। एंड गेस व्हाट, एक और चीज ट्रंप ने और फीफा के चेयरपर्सन ने मिलके की है। जी हाँ, और वो ये है कि जैसे एनबीए में रिंग्स दी जाती हैं प्लेयर्स को जो कि टीम जीतती है, इस बार ऐसा ही फीफा में भी किया जा रहा है। आप लोग बोलोगे एलो जी, एक ही हो गया, मतलब एनबीए वाली चीजें अभी यहां भी शुरू कर दी। अब ये बहुत अमेरिकन चीज है, तो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में होस्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि यहां पर करें। जी हाँ, अब आप लोगों को मैं बता दूं कि 2000 से ज्यादा रिंग्स बनी हैं ये, लेकिन सिर्फ 30 ही जो हैं वो प्लेयर्स को दी जाएंगी, जो कि ऑफ कोर्स जिसकी टीम जीती है, लेकिन उसके बावजूद जो उसके अलावा जितनी भी जो रिंग्स हैं उनको बेचा जाएगा ताकि फीफा और पैसे कमा सके। जी हाँ, उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के जो फाइनल वेन्यू की घास भी बेच दी, उन्होंने रिंग्स भी बेच दी, मुझे लगता है ये सब कुछ बेच डाले फीफा वर्ल्ड कप वाले सब कुछ बेच डालेंगे, उनको पैसा कमाने की पड़ी है। आई डोंट नो कहां से आते हैं इतने भूखे लोग, कहां से। जी हाँ, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ फीफा चेयरपर्सन का भी मजाक उड़ाना बनता है, क्योंकि वो डिजर्व करता है इंसान। चलिए इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
4: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निःशुल्क है, और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
5: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ. ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਖ ਸਰਪੰਚ.
6: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ.
5: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ. देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च.
7: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है. मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है. स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं. प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को. फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660.

0: may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं एक और बहुत ही जबरदस्त किस्से की जो कि वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, और ये किस्सा

टॉम हॉलैंड से रिलेटेड। ऑफ कोर्स टॉम हॉलैंड जो कि लिटरली द ओडिसी में इस वक्त चमकते हुए सितारे से भी ज्यादा चमक रहे हैं। जी हाँ, और ऑफ कोर्स फीफा वर्ल्ड कप के उस सितारे के बारे में भी है जो कि लिटरली हर किसी को अपना दीवाना बना दे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अर्लिंग हॉलैंड एंड टॉम हॉलैंड। जी हाँ, सो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि टॉम हॉलैंड जो है वो अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए जिमी फैलन शो पे पहुंचे हुए थे। जी हाँ, जिमी फैलन के साथ वो बात करते करते उन्हें बताते हैं कि कैसे मैंने अर्लिंग हॉलैंड को, जी हाँ अर्लिंग हॉलैंड को एक मैसेज किया था, डायरेक्ट मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन उसका रिप्लाई उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने लिखा था कि यू नो व्हाट, कैन वी मीट फॉर अ डिनर, लेट्स मीट दिस दैट ऑल दैट जैज, और वो फैन है अर्लिंग हॉलैंड के और इसलिए उन्होंने लिखा। लेकिन उन्हें पता चलता है कि अर्लिंग हॉलैंड ने कभी उनका मैसेज देखा ही नहीं। जी हाँ, मतलब अर्लिंग हॉलैंड ने उसका रिप्लाई ही नहीं किया। ये टॉम हॉलैंड ने खुद ही बोला हुआ है जिमी फैलन के शो पे कि या आई नो ये बात हो रही है और ये बात सच है, मैंने सच में उन्हें डीएम किया था और मैं उनके साथ हैंग आउट करना चाहता था, बट बंदे ने मेरा मैसेज देखा ही नहीं। अगर ये बोलते कि मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा है वैसा है, मैं फिर भी मान जाता, बट मेरा मैसेज ही नहीं देखा। या इट इज वेरी फनी, बट इट हैपेंड, इट इज अ रियल इंसिडेंट। एंड गेस व्हाट, जब ये क्लिप वायरल होती है जिमी फैलन के शो से, तो उसके बाद अर्लिंग हॉलैंड उन्हें रिप्लाई करते हैं। जी हाँ, और वो जिमी फैलन के उसी शो की रील पर रिप्लाई करते हैं कि ओके टॉम हॉलैंड, आई एम रेडी, टेल मी द प्लेस। जी हाँ, जो मतलब लिटरली टॉम हॉलैंड ने मैसेज किया था, अर्लिंग हॉलैंड ने देखा नहीं था या फिर देख के भी अनदेखा किया था, वो नहीं पता। पर अर्लिंग हॉलैंड इज अ वेरी फनी मैन, ही इज अ वेरी यू नो व्हाट इंटरेस्टिंग मैन, सो मुझे नहीं लगता उन्होंने देखा था और फिर उन्होंने मना किया था या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन था। बट द थिंग इज कि अब वो फाइनली उस हैंग आउट करने के लिए, उस डिनर के लिए रेडी है और उन्होंने कह दिया टॉम हॉलैंड को कि ठीक है, टेल मी द प्लेस डू, टेल मी द प्लेस। और इसी के साथ वो फाइनल इनविटेशन जो कि बहुत पहले टॉम हॉलैंड ने भेजा था, जो कि मिला था या नहीं मिला था, अब वो फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया है अर्लिंग हॉलैंड के द्वारा। एंड या ही इज अ वेरी फनी मैन, बट गेस व्हाट, स्पाइडरमैन आपको खुद कह रहा है कि लेट्स हैंग आउट, बट आप ऐसे सोच रहे हो कि ओके आई डोंट नो हु दिस डूड इज, बिकॉज एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज कि अर्लिंग हॉलैंड मूवीज ही नहीं देखते, एंड दैट्स व्हाई ही डज नॉट नो, ही डू नॉट नो कि टॉम हॉलैंड कौन है, स्पाइडरमैन कौन है, बिकॉज ही डज नॉट वॉच मूवीज। या अर्लिंग हॉलैंड सिर्फ और सिर्फ खाना खाते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो दानवों जितना खाना खाते हैं, पर ठीक है, आई मीन बनता है भाई, बनता है, क्योंकि वो बंदा अपनी बिल्ट के हिसाब से खाना खाता है और फिर उसके बाद अपनी बिल्ट के हिसाब से गोल्स भी करता है। लेकिन अगर आपने अर्लिंग हॉलैंड को गोल स्कोर करते हुए नहीं देखा, जरूर देखिए, आप बोलोगे कि इज दैट मैन अ रियल मैन, क्योंकि जिस हिसाब से वो पेचीदा गोल करते हैं उनको लगेगा कि ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। या सो फाइनली अर्लिंग हॉलैंड और टॉम हॉलैंड जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो जाएंगे डिनर करने। वी डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट वेन्यू, बट या हम यही कहेंगे कि अर्लिंग हॉलैंड, हम भी अगर आपको इनवाइट करेंगे तो क्या आप हमारा भी इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: तो यार
1: क्या
0: जानम समझा करो जानम समझा करो जानम समझा करो।

जी दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और उनके बहुत सारे शौक हैं। जी हाँ, कभी कभार शौक जो है वो बहुत अजीब भी होते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा जो है वो वायरल हो रहा है इंटरनेट पर। और अगर इंटरनेट पर कोई किस्सा वायरल हो रहा है तो आपको मैं ना बताऊं, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ हुआ कुछ ऐसा है कि चाइना का ये किस्सा जो है वो वायरल हो रहा है, जहां पर एक वुमेन जो है, एक एल्डरली वुमेन जो कि चेंगदू प्रोविंस से है चाइना के, सिचुआन प्रोविंस से चाइना के, और वहां पर जो है उनको देखा गया और फिर उसके बाद जो है उनकी फोटोज को कैप्चर किया गया और फिर अब उनकी फोटोज जो है वो वायरल हो रही है। सो अपेरेंटली उनकी फोटोज इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि वो अपनी पार्ट टाइम डिश वॉशिंग जॉब को के लिए जो है वो आती हैं और वो अपना काम जो है वो करती हैं। आप लोग बोलोगे कि एक औरत जो कि अपना काम करने आ रही है, जो कि डिश वॉशिंग का काम करती है, उसमें मतलब वायरल होने वाली क्या बात है? मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि करते हैं ये काम, सो इसमें वायरल होने वाली तो कुछ बात हमें लगी नहीं। वेल, वायरल होने वाली बात ये है कि वो अपनी डिश वॉशिंग जॉब के लिए आती है $400,000 की ब्लैक बेंटली में बैठ कर। जी आप लोग बोलोगे हैं क्या, Are you kidding? निविया शर्मा? No, I'm not kidding at all. ये सच्चाई है, ये सच्ची बात है। और ये इनफैक्ट चाइना के जो न्यूज़पेपर है चाइना टाइम्स जो है, उनके न्यूज आउटलेट चाइना टाइम्स में जो है, उन्होंने कंफर्म किया है कि सच में एक वुमेन है जो कि अपनी डिश वॉशिंग की जॉब के लिए आती है रोज, और वो लिटरली बिलोंग करती है एक हाईली वेल टू डू फैमिली से, और उनको काम करने की और पेचेक की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ काम करती है बिकॉज ऑफ हर बोर्डम, आउट ऑफ बोर्डम। और उन्होंने कहा है कि इट इज वेरी बोरिंग एट होम एंड माई बॉडी फील्स अनकंफर्टेबल इफ आई डोंट वॉश डिशेस फॉर अ डे। आप लोग बोलो हैं? What are you talking about? आप लोग बोलोगे हाँ, मतलब नीवे हमें समझ नहीं आ रहा। वेल, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो मुझे भी नहीं समझ आया था, बट या देयर आर पीपल जो कि बोर हो जाते हैं तो वो डिफरेंट चीजें करना पसंद करते हैं। कुछ लोग घूमने चले जाते हैं, कुछ लोग चैरिटी करते हैं, कुछ लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं फ्री फ्री। यहाँ पर एक लेडी है जिसको डिश वॉशिंग बहुत ज्यादा पसंद है, वो एकदम अमीर फैमिली से है और वो अपनी बेंटली में बैठ कर आती है, वहां उतरती है और फिर उसके बाद अपनी डिश वॉशिंग की जॉब के लिए जाती है। जरूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड की वजह से जो है वो ये करती है। और ये कहना है उस लेडी का कि मैं अगर मैं एक दिन वो डिश वॉश ना करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी जो है वो अजीब सी हो गई है। या ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस दुनिया में। या आई नो जो आप सोच रहे हो, मैं भी वही सोच रही हूँ। डेफिनेटली देयर आर डेफिनेटली मेनी यूनिक पीपल इन द वर्ल्ड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
3: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये grocery pass वाली shop से ले सकते हैं ना?
4: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
3: ऐसा क्या खास है वहाँ?
4: सब कुछ. Quality spices, lentils.
5: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्चे निविया के साथ। और दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ जाने का, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड इज गोल्ड। सो बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास कोई गाना है जो कि है पुराना और आप चाहते हो उसे हमसे प्ले करवाना, तो जल्दी से भेज दीजिए, क्योंकि तभी तो बात बनेगी, राइट? और जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ पहला इस खूबसूरत से सेगमेंट का, वो हम सबका बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। और मैंने हम सब इसलिए बोला है क्योंकि वो सच में हम सबका बहुत ज्यादा फेवरेट है। जब आप गाना सुनोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा मैंने क्यों कहा था। तो आइए, किस्सा भी हम आपको सुनाएंगे, गाना भी सुनाएंगे। ओल्ड इज गोल्ड, पुराने गाने पुराने खूबसूरत तरानों में आपका स्वागत है।

जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ अभी आपने बहुत ही खूबसूरत गाना सुना कुदरत मूवी का। ऑल्दो ये गाना जो है वो किशोर दा ने गाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया हुआ है। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब किशोर दा के जितने भी गाने हैं उनमें से ये जो है वो बहुत ऊपर आता है मेरे दिल में। आपके लिए भी होता होगा डेफिनेटली, बिकॉज ये गाना है ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत। चलिए अब आपको किस्सा सुनाते हैं लता जी और रफ़ी साहब का। और एक इंटरव्यू लता जी का चल रहा था और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बारे में बताया था। जी हाँ, अब आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि लता जी रॉयल्टी चाहती थी। जी हाँ, मतलब लता जी ने कह दिया था कि अगर मेरे गाने कोई भी प्ले करेगा तो उसमें जो है मतलब जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, आगे भी हमारे गानों का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जो कि अब जो है वो सिंगर्स को दी जाती है, पर उस टाइम नहीं दी जाती थी। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये शुरुआत जो है वो लता जी ने की थी। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि लता जी रॉयल्टी चाहती थी लेकिन रफी साहब रॉयल्टी नहीं चाहते थे, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। तो रफी साहब को लगता था कि हम जो है वो गाना गाते हैं, हम जो है वो मौसीकी करते हैं और उसके बाद जो है वो हमारा काम खत्म हो जाता है और हमें रॉयल्टी उसके बाद नहीं मांगनी चाहिए। हमने गाना गाया, हमें पैसे मिल गए, बस वहीं बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर लता जी चाहती थी कि हमें क्रेडिट भी मिले और हमें रॉयल्टी भी मिले। मतलब जब भी कोई गाना हमारा प्ले करे तो हमें उसके पैसे मिलने चाहिए और हमें उसका क्रेडिट भी मिलना चाहिए। अदरवाइज प्लेबैक सिंगर्स की तो बात ही नहीं होती थी। प्लेबैक सिंगिंग जो है वो टर्म ही नहीं थी, वो लता जी ने शुरू की थी। तो ऑफकोर्स रफ़ी साहब और लता जी के बीच में इस वजह से जो है वो एक दीवार खड़ी हो गई थी, क्योंकि रफ़ी साहब को लगता था कि रॉयल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, पर लता जी को ये लगता था। 3 साल इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई काम नहीं किया है। और फिर शंकर जयकिशन जी आते हैं और वो लता जी को कहते हैं कि लता जी हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि देयर आर सम सॉन्ग्स, कुछ गाने होते हैं जहां पे हमें ड्यूएट चाहिए आपका और रफी साहब का, और हम वो नहीं बना पा रहे हैं, तो प्लीज कुछ कीजिए। फिर उसके बाद जो है लता जी और रफी साहब की सुलह हो जाती है और वो रॉयल्टी वाला चक्कर जो है वो खत्म हो जाता है। लता जी से पूछा जाता है कि अच्छा ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आप रफ़ी साहब कैसे थे उनके बारे में कुछ बताइए। तो लता जी उसी इंटरव्यू में कहती है कि बहुत ही सीधे इंसान थे, बहुत ही साफ इंसान थे, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते थे, बहुत ज़्यादा कोई उनमें अवगुण नहीं था, कोई बुरी आदत नहीं थी, ना तंबाकू, ना शराब, ना सिगरेट, कुछ नहीं, बस सिर्फ खाने का शौक था। जी हाँ, रात को मैंने ये भी सुना है उनके घर वालों से कि रात को आते थे और खुद ही फ्रिज खोल के जो है वो जो भी अच्छा लगता था खाने को वो फटाफट खा लिया करते थे। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है। और लता जी ने ये कहा है कि एक बार की बात है, मैं मेहंदी हसन साहब को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी और मेहंदी हसन साहब के मैं गाने गुनगुनाया करती थी, और उसके बाद क्या होता था हम आपको बताते हैं, लेकिन बात लंबी हो जाएगी और यहाँ पर एक गाना जो है वो प्ले करना पड़ेगा हमें, और ये खूबसूरत सा गाना जो है वो आप सबके लिए मेरी तरफ से।

दोस्तों, आप बोलोगे कि निविया शर्मा, आज तो ऐसा लग रहा है कि तुमने सारे खूबसूरत गाने प्ले करने की सोच ली है। वेल ऑफ कोर्स, ये क्लासिक फेवरेट्स है, मतलब जब ये चलेंगे तो कौन नहीं पसंद करेगा, राइट? ऐसे ही थोड़ी ये सेगमेंट हमारा और आपका सबका बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और फेवरेट सेगमेंट है, हमारे दिल के इतने ज्यादा करीब है। चलिए दोस्तों, आपको मैं किस्सा सुना रही हूँ एक इंटरव्यू का, जहां पर लता जी से पूछा गया था कि कैसे थे रफी साहब, अगर आपको रफी साहब को बयां करना हो तो कैसे कहेंगी। तो लता जी ने सीधा सीधा कहा कि रफी साहब बहुत ही साफ दिल इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही साफ दिल इंसान, कभी कोई मैल नहीं, कभी किसी को उन्होंने कुछ कहा नहीं, जी हाँ, कोई गलत ऐब उनमें नहीं था, सारी अच्छी चीजें, बस खाने का शौक था। फिर वो बताती है कि मैं जब भी काम किया करती थी, मुझे मेहदी हसन साहब बहुत ज्यादा पसंद थे, तो मैं उनके गाने गुनगुनाया करती थी रिकॉर्डिंग्स के दौरान, जब भी मैं रिकॉर्ड कर रही होती थी, और उसमें काफी टाइम ड्यूएट्स भी मैं कर रही होती थी, तो ड्यूएट्स के वक्त जो है उन्होंने रफी साहब ने मुझे मेहदी हसन साहब के गानों को गुनगुनाते हुए देखा था। तो एक दिन रफी साहब आते हैं और ऐसे ही बड़े सरकास्टिक टोन में और फनी टोन में मुझे कहते हैं कि अरे आप मिलने नहीं गई, मुंबई आए हैं वही जिनके गाने आप गुनगुनाती रहती हैं और आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लता जी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अरे रफ़ी साहब ऐसी बात नहीं है, मुझे आपके गाने भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। कहते नहीं नहीं हम तो फिल्मों में गाते हैं ना। जी हाँ, सो ऑफकोर्स लता जी कहती हैं कि वो कोई मुझे सरकास्टिक टोन में कहने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो फनी तरीके से वहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे थे कि मेहदी हसन साहब जो है वो मुंबई आए हुए हैं और क्या मिले नहीं आप जाके उनसे, क्योंकि आप उनके गाने गुनगुनाती हैं, इतना पसंद करती हैं आप उनके गुनगुना को, उनकी गायकी को। सो वहां पर लता जी कहती हैं कि वो देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी और मैं मुस्कुरा रही थी कि कैसे, कितनी प्यारी सी जलन यहाँ पर रफी साहब दिखा रहे हैं कि मैं फेवरेट नहीं हूं और मेहदी हसन साहब फेवरेट हैं। बट ऑफ कोर्स वो वहां पर सिर्फ फन के लिए वो कह रहे थे, बिकॉज ही वॉज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन कि वो जेलस फील करते या कुछ ऐसा होता, बिकॉज रफी साहब जेलिसी वाली फीलिंग जानते ही नहीं थे। लता जी कहती हैं कि हमेशा वो बहुत सीरियस रहते थे, बहुत ही सुलझे हुए रहते थे, पर कभी कभार वो मजाक भी किया करते थे। जी हाँ, बहुत ही कभी कभार। लेकिन अगर मजाक की बात हम करें तो किशोर दा उसमें सबसे ज्यादा आ गए। किशोर दा के साथ जो भी इंसान काम कर रहा होता था वो हंस हंस के वैसे ही गिर जाता था, काम करने की हालत में रहता ही नहीं था। जी हाँ, यहाँ पर अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल। लेकिन आपको क्या करना है, वेल ऑफकोर्स आपको मेरा इंतजार करना है, मजे करने हैं कुछ बढ़िया सा। अगर आपने सुना देखा तो हमें जरूर सेंड कीजिएगा, अपनी फीडबैक भी हमें जरूर दीजिएगा। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। और ये गाना आप सबके लिए लास्ट सॉन्ग मेरी तरफ से, अगेन एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, बट किशोर दा की आवाज में। बाय, सी यू, टाटा।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: सिर तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन प्रो टूर टेनिस क्वालिफायर मैट ह्यूमा ने रचा इतिहास। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं ब्रिस्बेन प्रो टूर टेनिस में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। क्वालिफाइंग राउंड में आए मैट ह्यूम ने लगातार 7 मैच जीतकर अपने करियर का पहला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। जी हाँ, वहीं ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स का काउंटडाउन, ग्रीन एंड गोल्ड होगा शहर। जी हाँ, ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स और पैरालंपिक खेलों के आयोजन में अब ठीक 6 साल का वक्त बचा है। इस खास मौके पर पूरा क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन शहर जश्न की तैयारी कर रहा है। इस गुरुवार यानी 23 जुलाई को शहर की सभी बड़ी इमारतें जैसे मैरोबिरो सिटी हॉल को सुनहरी और हरी लाइट्स में रोशन किया जाएगा। वहीं ब्रिस्बेन का मैरीबोरो शहर करेगा ओलंपिक तीरंदाजी की मेजबानी। जी हां, ओलंपिक 2032 को लेकर ब्रिस्बेन के पास स्थित मैरीबोरो क्षेत्र के मेयर जॉर्ज सीमोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये पूरे क्षेत्र के लिए लाइफ चेंजिंग मौका है क्योंकि मैरीबोरो को ओलंपिक की तीरंदाजी इवेंट होस्ट करने के लिए चुना गया है। इसी के साथ क्वींसलैंड टेनिस सेंटर में ब्रिस्बेन प्रो टूर का दूसरा फेज आज से शुरू। टेनिस फैंस के लिए ब्रिस्बेन से एक और बड़ी अपडेट है। पहले शानदार हफ्ते के बाद आज से क्वींसलैंड टेनिस सेंटर में दूसरे ऑस्ट्रेलियन प्रो टूर इवेंट की शुरुआत हो रही है। पहले हफ्ते के हीरो मैट ह्यूम को इस बार मेन ड्रॉ में स्पेशल एंट्री मिली है। इसी के साथ बेल थॉमसन विमेन सिंगल्स लीडर बोर्ड पर टॉप पर पहुंची। जी हां, ब्रिस्बेन टेनिस की आखिरी खबर में ऑस्ट्रेलिया की ही बेल थॉमसन भले ही फाइनल में न्यूजीलैंड की डेस्टानी एवा से हार गई हो, लेकिन शानदार प्रदर्शन के दम पर वे महिलाओं के वाइल्ड कार्ड पॉइंट्स रेस लीडर बोर्ड पर सबसे टॉप पर पहुंच गई हैं। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले दिल्ली में चलो संसद मार्च को लेकर भारी हंगामा। आज सुबह दिल्ली के जंतर मंतर और संसद मार्ग पर कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च को लेकर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, जिसे तोड़ने की कोशिश के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। वहीं सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने की उम्मीद। शिक्षा व्यवस्था में सुधारों को लेकर अनशन पर बैठे मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आज अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार शिक्षा के इस मुद्दे पर संसद में बात करने की जवाबदेही लेती है तो वो अपना अनशन वापस ले लेंगे। वहीं देश में रिटेल महंगाई दर 4% के पार। आम जनता की जेब पर थोड़ा असर पड़ता दिख रहा है। पिछले 16 महीनों में पहली बार देश की रिटेल महंगाई दर 4% के आंकड़े को पार कर गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीजों के बढ़ते दाम है। फूड इन्फ्लेशन यानी खाद्य महंगाई दर इस बार 5.32 पर पहुंच चुकी है। इसी के साथ उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 4000 पेड़ों की कटाई पर रोक। पर्यावरण प्रेमियों के लिए उत्तराखंड से एक अच्छी खबर है। भनियावाला ऋषिकेश रोड प्रोजेक्ट के लिए काटे जाने वाले करीब 4000 पेड़ों की कटाई पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगा दी है। वहीं केन बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट पर विवाद, पर्यावरणवादी हिरासत में। जी हां, मध्य प्रदेश से खबर है कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता अमित भटनागर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, अमेरिका के ईरान पर हवाई हमले। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इस वक्त मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी सेना ने आज सुबह तड़के ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई एक अमेरिकी सैनिक की मौत के बाद की गई है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दो तेल टैंकरों में धमाका। इस बीच ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समुद्री रास्ते से गुजर रहे दो तेल टैंकरों में जोरदार ब्लास्ट हुए हैं, जिससे वे वहीं रुक गए हैं। इस तनाव के चलते ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें पिछले एक महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं। वहीं कुवैत और बहरीन में ड्रोन हमले, एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर। मिडल ईस्ट का यह तनाव अब पड़ोसी देशों तक फैल रहा है। कुवैत की सेना ने आज सुबह दावा किया है कि उन्होंने ईरान की तरफ से आ रहे कई दुश्मन ड्रोन से हवा में ही मार गिराया। वहीं बहरीन की राजधानी मनामा में भी सुबह सुबह सायरन की आवाजें सुनी गई हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील टाली। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ होने वाले एक बड़े परमाणु समझौते को फिलहाल के लिए टाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम को रिफाइन करने के नियमों पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। वहीं न्यूयॉर्क के मेयर उम्मीदवार का बयान, बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करूंगा। जी हां, न्यूयॉर्क के मेयर पद के उम्मीदवार रहे जोहरान ममदानी, जो कि अब मेयर बन चुके हैं, उनके विवादित बयान को लेकर कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को अगर वो न्यूयॉर्क में आते हैं तो उनको हिरासत में ले लिया जाएगा, उन पर फिर से मीडिया ने ध्यान खींचा है। ममदानी ने कहा कि अगर वे मेयर बनते हैं, उन्होंने कहा था, तो वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पकड़वा देंगे, हिरासत में ले लेंगे। वहीं ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री पर नया संकट, ट्रंप का ग्लोबल टैरिफ खत्म होने वाला है। दुनिया भर की कार कंपनियों के लिए एक अहम खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अस्थाई 10% ग्लोबल टैरिफ इस हफ्ते 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और इसके बाद ऑटो पार्ट्स पर 10% से लेकर 12.5% तक का नए टैक्स जो है वो लगाए जा सकते हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले स्पेन बना नया फुटबॉल चैंपियन, जीता अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप। जी हां, फुटबॉल के दीवानों के लिए कल की रात ऐतिहासिक रही। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। वहीं पीवी सिंधु का कमाल, जीता पहला जापान ओपन खिताब। भारतीय बैडमिंटन फैंस के लिए बेहद गर्व का पल है। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने शानदार खेल दिखाते हुए अपना पहला जापान ओपन खिताब जीत लिया है। वहीं इंग्लैंड ने जीती वनडे सीरीज, रोहित शर्मा का शतक बना गया बेकार। जी हां, क्रिकेट के मैदान से खबर है कि इंग्लैंड ने भारत को तीसरे वनडे मैच में 27 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने 387 रन लुटा दिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतक तो लगाया, लेकिन सैम करन की घातक गेंदबाजी के आगे टीम इंडिया मैच हार गई। वहीं सर गारफील्ड सोबर्स को लॉर्ड्स में दी गई श्रद्धांजलि। जी हां, इसी मैच के दौरान एक भावुक पल भी देखने को मिला। क्रिकेट जगत के महानतम ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स के सम्मान में भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर मैच खेला। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Gmail.com.

0: क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू आई आई

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

काशिकाल जी मैं संदेश अलग शर्मा तुसी सुन रहे हो रेडियो ब्रिस्वानी 101 FM ते जिगड़ा हो चुके हैं हुण तक ते हम खबरां दा ता फिर चलो करते हैं शुरुआत। उधर एतवार नूं नागालैंड दे मोन जिले दी डिफेंस कलोनी विच जमीन खिसकण कारण घट्टो घट्ट 4 लोकां दी मौत हो गई। कई लोकां दे मलबे हेठां फसण दा खच्चा है। जमीन खिसकण कारण कई घर रुड़ गए। बचाव टीमां ने वड्डे पद्धर ते बचाव कार्य शुरू कर दिता। बचाव टीम दे इक अधिकारी ने दस्सिया कि जमीन खिसकण नाल कलोनी दे लगभग 15 घर बुरी तरह दे नाल प्रभावित होए। उधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुआंढी देश कैनेडा नूं एक बेहद सख्त धमकी दित्ती है। रिपोर्टां मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि जे कैनेडा ने अपने जंगलों विच लगण वाली अग दे कारण अमरीका वल आ रहे धुएं ते काबू ना पाया तां अमरीका कैनेडियन वस्तुआं ते भारी टैरिफ लगा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि कैनेडा दे जंगलों की अग दा धुआं सरहद पार करके अमरीका दे कई सूबियां विच हवा प्रदूषण नूं खतरनाक पद्धर ते पहुंचा रहा है। उन्होंने दोष लगाया कि कैनेडा सरकार अपने जंगलां दा प्रबंधन सही तरीके नाल करन विच नाकाम रही है जिसका खामियाजा अमरीकी नागरिकां ते उद्योगां नूं भुगतना पै रहा है। ट्रंप मुताबिक टैरिफ धुएं कारण होए अमरीका दे नुकसान दी भरपाई लई खर्चा जाएगा। उधर दूजे पासे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दी सख्त इमीग्रेशन नीतियां दा असर हुण देखण नूं मिल रहा है। ताज़ा जानकारी मुताबिक इस साल भारत तों अमरीका विच गैर कानूनी प्रवास विच तेजी नाल गिरावट आई है। अमरीकी सरहदी अधिकारियां ने वित्तीय साल 2026 दे मई महीने तक भारतीय प्रवासियां दे 20,614 एनकाउंटर दर्ज किए हैं। यह गिनती वित्तीय साल 2023 की इस म्याद नालों 69% घट है। साल 2023 भारत तो अमरीका विच गैर कानूनी प्रवास की सब तो वध गिनती देखण नूं मिली सी। 2023 अमरीकी सरहद ते भारतीयां दे 67,000 तो वध एनकाउंटर दर्ज किए गए सन। उधर जंगमां दी टुटण मगरों अमरीका ते ईरान विचाले एक बार फिर तो सीधी जंग शुरू हो गई है। दोवां पासियां तो हो रहे भयानक हमलिया कारण मिडल ईस्ट विच हालत बेहद तनावपूर्ण बन गए ने। इस दौरान ईरान दे एक सीनियर अधिकारी ने संयुक्त अरब अमीरात नूं एक बेहद सख्त चेतावनी दी है। ईरानी मीडिया रिपोर्टां मुताबिक ईरान ने UAE नूं अमरीका दा साथ देण दा अंजाम भुगतण लई तैयार रहण लई कह दिता है ते प्रमुख हवाई अड्डियां ते बंदरगाहां नूं तुरंत खाली करन दी वार्निंग दे दित्ती है क्योंकि ईरान ने वल्लों इन्हां टिकाणे स्ट्राइक की जा सकती है। ईरानी सुरक्षा सूत्रों मुताबिक यह चेतावनी अजिहे समय विच दित्ती गई है जदों अमरीकी फौज ईरान ते अगले वड्डे हवाई हमले दर्ज करने लई UAE दी तारती एयरबेस या उत्थे मौजूद फौजी ठिकाने दी वरतों कर सकती है। ईरान ने साफ शब्दों विच कहा है कि जे अमरीका ने ईरान खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई लई किसी भी खाड़ी देश की जमीन की वरतों की तो इस नूं उस देश नूं अमरीका का सहयोगी मान के सीधा जवाबी हमला किया जाएगा। तो हुण तक दी अहम खबरां विच बस इन्ना ही। खबरां दी वधेरे जानकारी ते सुझाव देण दे लई तुसी साडे नाल जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, सानूं ईमेल भी कर सकते हो। साडी ईमेल आईडी है brisoni@brisoni.com। इस नाल ही तुसी साडे नाल साडे फेसबुक पेज दे ज़रिए भी जुड़ सकते हो। साडा फेसबुक पेज है रेडियो ब्रिस्वानी 101 FM। फिर हाजिर होवांगे ताज़ा तरीन खबरां लैके। तकले दे इजाज़त, सत श्री अकाल।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो दुसानी वन सन वन एम ते जी आज संदेश अलग दिन तुम बने हुए हो। होप तुम इन्होंने गीतों को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हो। तो इसे तरीके दे नाल सोने सोने गीत मैं अगे भी तुम सुना रहूंगी नाले करती रहूंगी गल्लां। तो हुण गल्लां करिए ना जे आपां तां बॉलीवुड दे विच बहुत कुछ खास हुंदा हॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड। तो मैनू इंटरस्ट बॉलीवुड दे विच है क्योंकि बॉलीवुड दी फिल्मां ही इन्नियां सोहणियां आ रही है ना। तो सोचा कि तुहानू भी दसां देखो पिछे चलते हैं 1780s 90s सुपरस्टार्स नू दर्शकां दा बेहिसाब प्यार मिलिया। राजेश खन्ना तो लैके नुलैके कुड़िया दी दीवानगी किसी तो छुपी नहीं है कि वो जिस रास्ते चो लंघदे सीगे ना उत्थों दी धूल नाल कुड़िया अपनी मांग भर लैंदियां सी। राजेश खन्ना तो बाद धर्मिंदर अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना शत्रुघ्न सिन्हा ऋषि कपूर अते मिथुन चक्रवर्ती नू भी दर्शकां ने खूब प्यार दिता। पूरे तीन दहाकियां तक इन्हां सितारियां दा बॉलीवुड इंडस्ट्री विच जलवा रहा। इस विचों सिर्फ दो स्टार्स दे बेटे बेटियां नू ना इंडस्ट्री विच सफलता मिली है। ते ओ सुपरस्टार ते उन्हां दे बेटे कौन ने उन्हां बारे दसूंगी तुहानू पर पहला सुणाउनी है गीत।

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो उमसॉग से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा.
2: बिल्कुल. खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
3: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी.

जी अनु जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसानी 101.1 एम ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो तो सब तो पहला गल करते हैं बॉलीवुड दे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना दी। तो देखो राजेश खन्ना दा असल नाम ना जतिन खन्ना सीगा। राजेश खन्ना दे चेतन आनंद दी फिल्म आखरी खत नाल उन्होंने बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सीगा। उन्होंने शक्ति सामंत की फिल्म आराधना फिल्म नाल रातों रात स्टारडम हासिल किया। राजेश खन्ना ने ना 1969 यानी कि 1969 तो लैके 1974 यानी कि 1974 तक 17 तो ज्यादा हिट फिल्मा दित्तियां सी। उन्होंने कटी पतंग इतफाक डोली बंधन दो रास्ते खामोशी ते द ट्रेन सच्चा झूठा सफर आनंद आन मिलो सजना अंदाज मर्यादा हाथी मेरे साथ ही महबूब ते छोटी भाभी वर्गियां हिट फिल्मा दित्तियां सी। 1974 तो उन्हां दा डाउनफॉल शुरू होया सी। फिर उन्होंने 1980 के दहाके विच वापसी की। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया नाल 1973 विच ब्याह किया सी ते ब्याह तो बाद उन्हां दे दो बेटियां ट्विंकल खन्ना ते रिंकी खन्ना होईयां सी। इन्हां बारे दसना थानू इनी ये दसना जरूरी हुंदा ना छोटिया छोटिया चीजा दसनिया बहुत ज्यादा जरूरी हुंदिया। बेटिया बारे दस दी परपी लैंकी सुनो।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 Balaclava Street, Wollongabba में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में. बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003.
1: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.

जी जी अनु जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसाने वन सन ओ आर एम ते जी आर जी संदेश अलग दिन आल से बने हुए। देखो राजेश खन्ना दिया दोनों ही बेटियां ने बॉलीवुड विच किस्मत अजमाई, दोनों नू निराशा भी हथ लगी। राजेश खन्ना की वड्डी बेटी ट्विंकल खन्ना ने 1995 विच बॉबी देओल दे नाल बरसात फिल्म नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सी। डेब्यू फिल्म तो सुपरहिट रही पर इस तों बाद आने वाली मूवी फ्लॉप रही। ट्विंकल खन्ना ने जान दिल तेरा दीवाना इतिहास इंटरनेशनल खिलाड़ी जुल्मी बादशाह मीला वर्गिया फिल्मों में काम किया। ट्विंकल की भैन रिंकी खन्ना का करियर भी बॉलीवुड में कुछ खास नहीं चल पाया। रिंकी खन्ना ने प्यार में कभी कभी मुझे कुछ कहना है वर्गिया फिल्मों में काम किया पर तकदीर नहीं बदली। ते फिर तकदीर जदो नहीं बदली ना तो फिर जल्दी ही उन्होंने बॉलीवुड तो विदा भी ले लिया ते ब्याह करवा लिया। ट्विंकल खन्ना ने जिते अक्षय कुमार दे नाल ब्याह किया तो उधर रिंकी खन्ना ने बिजनेसमैन समीर सरन दे नाल ब्याह करवाया।

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.9 एम ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो हुण गल करदे हैं कि 70 ते 80 यानी कि 70s 80s के दहाके के सब तो वड्डे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक ने 2000 रिफ्यूजी फिल्म नाल करीना कपूर के नाल बॉलीवुड विच डेब्यू किया। जेबी दत्ता दे निर्देशन विच बनी यह फिल्म कुछ खास नहीं कमाल कर सकी। अभिषेक बच्चन दे करियर दे शुरुआत दी 14 फिल्मा फ्लॉप या डिजास्टर रहियां। उधर 2004 विच धूम फिल्म तो उन्हां नूं सफलता दा स्वाद चक्या हैगा। फिर बंटी और बपली, धूम 2, गुरु हिट रहियां। धूम 3, हैप्पी न्यू ईयर, हाउसफुल 3 वर्गे मल्टी स्टारर फिल्मा विच उन्हां दा काम सराया गया, पर वह सोलो हिट देण विच फेल रहे। अभिषेक बच्चन भी अपने पिता वर्गे स्टार नहीं दोहरा पाए, पर अज भी स्ट्रगल कर रहे ने।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Yaar, saag mein kuch dam nahi hai. Bilkul maja nahi aaya.
4: Kisi din ghar aana, asli desi ghee mein saag bana kar khilaunga tumhe.
3: Kahan yaar, aaj kal asli desi ghee milte kahan hai?
4: Kis duniya mein ho bhai? Quality food service mein triple refined pure desi ghee milte hain. Australia mein hi bante hain 100% pure cream se, 99.9% pure milk fat se. Aur to aur, har mausam mein uplabdh rehne ke saath saath high quality packaging mein bhi aate hain.
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

देखो फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सरोवर एम ते जी आज के संदेश अलग दिन से बने हुए हैं। उस तो बाद 70s 80s के दहाके के एक होर सुपरस्टार की गल कर लैने वो है कि नहीं जितेंद्र जितेंद्र के बेटे ने तुषार कपूर उन्हां दी गल करते हैं। तुषार कपूर ने बॉलीवुड विच मुझे कुछ कहना है दे नाल डेब्यू किया सी। पहली फिल्म तो सफल रही पर फिर किस्मत ने साथ नहीं दिता। तुषार कपूर की एक्टिंग भी दर्शकों को लुभा नहीं सकी। क्या दिल ने कहा जीना सिर्फ मेरे लिए कुछ तो है ते ये दिल गायब खाकी क्या कूल है हम गोलमाल लव स्टोरी क्या लव स्टोरी है शूट आउट एट लोखंडवाला बहुत सारिया फिल्मा कीतिया पर कोई फिल्म कमाल नहीं दिखा सकी। मल्टी स्टारर दे विच उन्हां नूं सराया गया पर उही गल ना अपने दम ते ओ वी सोलो हिट नहीं दे पाए ते जल्द ही ओ साइड हीरो बन के रह गए।

0: मैनू सारा कुछ मिले सुहाना साहब तो।
1: यस वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101 एम ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होए। देखो जितेंद्र दी एक टीवी हैगी है, बेटा नहीं कमाल कर सकिया, बेटी ने कीता हैगा एकता कपूर। जी हाँ, एकता कपूर टीवी दी दुनिया दी क्वीन कहलाई जाती है। उन्होंने तुषार कपूर तो ज्यादा उन्होंने सफलता मिली है। उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म कंपनी के बैनर तले एक तो वध के एक सीरियल प्रोड्यूस कीते। एकता कपूर ने हम पांच, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, कुसुम कहीं तो होगा, कसम से पवित्र रिश्ता बड़े अच्छे लगते हैं, ते जोधा अकबर वर्गे कई सीरियल्स बनाए। तुषार कपूर ते एकता कपूर ने ब्याह नहीं किया। तुषार कपूर जो 2016 सैरोगेसी ते आईवीएफ के जरिए एक बेटे के पिता बने, सिंगल फादर बने। तुषार ने अपने बेटे का नाम लक्ष्य रखा है। तुषार कपूर की भैन एकता कपूर ने भी 27 जनवरी 2019 सैरोगेसी के जरिए बेटे रवि कपूर को जन्म दिया। सिंगल मदर बनी, उन्होंने अपने पिता जितेंद्र के असली नाम ते बेटे का नाम रखा।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: Only God can judge me. That right? Only God, baby. Nobody else.
5: They secret.
6: Hey, yo, Sean.
7: Atul di khitti ap nukh di nak tak mere raahan di makama naal. Ho mere raahan di makama naal pak thak. Sahaj subah nu rakh.

वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.01 जी आर छे संदेश अलग दिन से बने हुए। देखो 70s 80s सुपरस्टार्स दे विच सिर्फ धर्मिंदर ही खलौते अजिहे स्टार है जिन्हां दे वड्डे बेटे सनी देओल का करियर बेहद सफल रहा। सनी देओल ने 1983 दी बेथा फिल्म नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया। फिर अर्जुन, घायल, दामिनी, घातक, बॉर्डर, गदर एक प्रेम कथा, गदर टू, बॉर्डर टू वर्गियां ब्लॉकबस्टर फिल्मां दित्तियां। सनी देओल ने अपने दम ते सोलो हिट दित्तियां ने। उधर उन्होंने भरा बॉबी देओल ने करियर की शुरुआत 1995 बरसात फिल्म नाल कीती सी। मूवी सुपरहिट रही, फिर सोल्जर, गुप्त वर्गियां हिट फिल्मां दित्तियां, पर इस तों बाद उन्होंने नसीब उन्हां तों गुस्से हो गया। बॉबी ने फ्लॉप फिल्मां दी लाइन चुन ली। पूरे 15 साल फ्लॉप करियर का दौर चुनिया। 2019 विच उन्हां दी किस्मत पलटी ते ओ नेगेटिव रोल्स करन लग गए। एनिमल मूवी विच उन्हां दा छोटा जिहा रोल दर्शकां दे दिल नूं छूकिया।

हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

देखो वेला हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन का, पर एक हो सुपरस्टार की गल करनी रह गई सी, तो सोचा उन्होंने गल भी जरूर कर ला ते उन्हां दी गल कर लैनी है जी। तो सुपरस्टार ऋषि कपूर 1973 विच आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी दे नाल डेब्यू किया सी। उन्होंने अपने करियर दे विच बहुत शानदार फिल्मां दित्तियां सी। अपनी छवि चॉकलेटी रही हैगी उन्हां दी। ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर ने अपने पिता की विरासत नूं अगे संभालिया है। वो अपने पिता नाल तो दो कदम अगे निकल गए। रणबीर कपूर ने 2007 विच सावरिया मूवी दे नाल डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप रही पर उन्होंने संघर्ष किया, फिर बहुत सारिया फिल्मां कीतियां ते ब्लॉकबस्टर रहियां ते रणबीर कपूर दे टैलेंट ते कामयाबी ते पूरी इंडस्ट्री ने मान ली हैगी, असीं भी मान गए हैगे। तां इह कुछ सितारे हैगे ने, उन्हां दे बच्चे ने जिन्हां ने की किया थानू दस्या हैगा। बाकी तुसी की किया सारा दिन तुसी जरूर दस्या करो, साडे नाल जुड़ते रह करो। रेडियो बरसोनी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जिहदे बरसोनी @bersoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा भी अपनाउणा अपना लो, साडा गल्ला पता जरूर करते रह करो। बाकी अपना ख्याल रख्या करो ते मैं तां इही कहना कि कल करांगे मुलाकात। रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भरतमान को दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देव खरोड़ इन एंड एज सरपंच।
1: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
0: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाल सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Maria Suku Suku.
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू आई आई

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: डोंट रिस्क योर लाइफ, टॉक टू अतुल बिफोर यू टॉक टू पुलिस। अज ही कॉन्टैक्ट करो अतुल जी नो ऑन 0400-234-235, दैट इज 0400-234-235।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनवीर फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

जीवन ईश्वर की उस ऊपर वाले की बहुत ही खूबसूरत देन है हम सबको। लेकिन क्या इस जीवन की अहमियत हम समझ पाते हैं? क्या इस जीवन को हम जान पाते हैं? क्या इस जीवन को हम उस तरह जी पाते हैं जिस तरह हम सच में जीना चाहते हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब आइए एक बार फिर से आज खोजते हैं रेडियो ब्रिजवाणी 107.1 एम पर। आदाब नमस्कार सत श्री अकाल राम राम दोस्तों, मैं हूँ सताक्षी और लेकर आई हूँ आज एक बार फिर से आपके लिए जीवन के आधार से जुड़ा हमारा खास सफर जीवन आधार। आइए इस गाने के साथ करते हैं आज के सफर की शुरुआत। सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवाणी 107.1 एम।

रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ एक बार फिर से आप हैं और ये सफर है दोस्तों जीवन आधार का। कहते हैं चिंता हो, कर्ज हो या फिर प्रेम हो, ये तीनों ही कोई जानबूझकर नहीं करता। कभी आपने प्रेम जानकर किया है? नहीं। चिंता जानकर करते हैं? नहीं। कर्ज जानबूझकर लेने जाते हैं? नहीं। जीवन में कुछ समय ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनके अनुसार ये सब चीजें हो जाती हैं। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता है और इसीलिए इन तीनों में से कुछ भी करने के लिए आप खुद को दोष मत दीजिए। हाँ, कोशिश जरूर कर सकते हैं कि इनसे एक दूरी बनाए रखें। नहीं, प्रेम से नहीं, क्योंकि प्रेम विश्व की सबसे खूबसूरत देन है हम सभी के लिए, जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं सभी के लिए, क्योंकि प्रेम ही वो है जिसके जरिए आप दुनिया जीत सकते हैं। प्रेम से मेरा मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप से नहीं है, प्रेम से मतलब हमारा एक दूसरे से प्रेम करना है, चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मुल्क का हो। सबसे एकता और प्रेम का जो हमारा नाता है, अपनेपन का जो हमारा नाता है, वो बना रहे तो बस इस पूरे विश्व में एक शांति आ जाएगी, है ना। और उसी शांति के नाम सुनेंगे अभी अगला गीत। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

जीवन को और भी करीब से जानने की एक छोटी सी कोशिश हम और आप कर रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर। श्रोताओं, हमारे सफर जीवन आधार में आज एक बार फिर से इसी सफर में आपके साथ सताक्षी है और मेरे साथ कुछ ऐसे गीत हैं जो जीवन और हमारी जिंदगी के महत्व को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं। एक ऐसे ही गीत के साथ अभी आगे बढ़ूंगी। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए सताक्षी के साथ।

मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, मलमल धोए शरीर को धोए न मल का मैल, नाहे गंगा गोमती रहे बैल के बैल। रेडियो ब्रिजवाणी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ जीवन आधार। जी हाँ दोस्तों, हम अपने शरीर को तो बहुत अच्छी तरह साफ करते हैं, लेकिन मन के मैल की सफाई नहीं करते हैं। जाते हैं गंगा गोमती जैसे नदियों में नहाकर खुद को पवित्र करने के लिए, खुद के पापों को धोने के लिए। लेकिन अगर मन मैला हो तो भला पाप कैसे धुलेंगे ये भूल जाते हैं। तो अपने मन को साफ रखिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवाणी 1701 AM पर जीवन आधार।

जीवन के आधार से जुड़ा हमारा और आपका खास रिश्ता जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर। आपके साथ इस सफर में आज एक बार फिर से सताक्षी है जो आपका साथ निभा रही है। हमारे और आपके साथ का सफर, हमारे जीवन को समझने का ये कारवा आगे भी जारी रहेगा। आइए अगले गीत के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते रहिए जीवन आधार।

रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ हैं आप और ये सफर है श्रोताओं जीवन के आधार से जुड़ा खास सफर हमारा जीवन आधार। अक्सर आप सुबह उठते ही प्रेयर्स करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप नमाज अदा करते हैं, आप चर्च जाते हैं, किसी भी फॉर्म में आप अपनी प्रार्थना जो है वो उस शक्ति तक पहुंचाते हैं जो इस संसार का निर्माण करने वाली एक शक्ति है। लेकिन कभी सोचा है अगर मन ही शांत ना हो तो पूजा करने का क्या मतलब? घर में क्लेश हो और मंदिर में आप पूजा करें या आप नमाज पढ़ें तो क्या वो जो पाप मन का है या जो अशांति मन की है वो उस शक्ति तक पहुंचेगी जो इस सारे संसार को चला रहा है? ईश्वर को पूजते हैं लेकिन कहते हैं कि सच्चा ईश्वर जो है वो माँ बाप में मिलता है। अगर आपको अपने पेरेंट्स ही बोझ लग रहे हैं, आपको अपने माँ बाप ही बोझ लग रहे हैं और आप अपनी प्रार्थना उस ईश्वर तक पहुंचा रहे हैं, उस शक्ति तक पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो शक्ति मेरा जो सपना है वो पूरा नहीं कर रही है, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रही, तो मुझे बताइए कि कैसे आपकी बात जो है वो वहां तक पहुंचेगी और कैसे वो सुनेंगे। सोचिए मेरी बात को और सुनते रहिए जीवन आधार रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर श्रोताओं, और जीवन के इस खास सफर में आपका साथ हम दे रहे हैं और हमारा साथ आप दे रहे हैं। सुबह की ये खास जो हमारी आपकी बातें हैं ये आगे भी यूं ही जारी रहेंगी। हमें सुनते रहिए और सुनते रहिए जीवन आधार। आइए एक और एक गाने के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते रहिए सताक्षी को यूं ही इस अगले गीत के उस पार भी ढेर सारी बातों में।

अगर बात करें श्रोताओं श्रीमद् भगवद गीता की, तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो सबसे ज्यादा काबू करने की किसी चीज पर मनुष्य को बात कही है वो है उसका मन। मन को अगर इंद्रियों को काबू कर लिया तो फिर आप इस संसार को जीत सकते हैं, क्योंकि ये मन ही तो है जो बहुत चंचल है, पल में इधर पल में उधर। मन ही है जो आपको पल में खुश कर देता है और पल में उदास कर देता है। ये मन बहुत लोभी है, बहुत लालची है, और इसीलिए मन के चले नहीं चलना चाहिए, यानी जिस ओर मन आपको लेकर जाता है आपको उस ओर नहीं जाना है। अनेक जगह है मन की जहां मन आपको खींचने वाला है, लेकर जाने वाला है, ये कभी एक जगह टिक के नहीं रहेगा। और इसीलिए ये मन जो है ये आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स लेकर आता है, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा होगा तो नेगेटिव थॉट्स तुरंत आएंगे, नेगेटिव हो रहा होगा तो पॉजिटिव थॉट्स तुरंत आएंगे। इस मन को वश में करना ही जग जीतने जैसा है, और बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। मैंने कहा ना मन बहुत चंचल है। आइए इस चंचल मन के नाम सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

तो श्रोताओं, ये था आज एक और सफर हमारे और आपके जीवन से जुड़ा, जीवन आधार का सफर। एक ऐसे ही सफर पर कल हम और आप फिर से साथ चलेंगे और अपने जीवन को एक आधार देने की, एक बेस देने की कोशिश करेंगे। आज के सफर से अब लूंगी इजाजत। नमस्ते।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: हेलो जी, नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन. मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन, और लेकर आई हूं आप सभी के बीच ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की सबसे ताजा अपडेट्स. उन सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप सभी को जुड़े रहना होगा मेरे यानी की जानी के सफर प्रोग्राम के साथ, ताकि इस सफर को बेहतरीन बना सके. तो दोस्तों, आप सभी का मंडे तो बहुत खूबसूरत गया, वैसे ही आप सभी का ट्यूजडे यानी की आज का दिन भी बहुत खूबसूरत जाने वाला है. एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक होकर आप ये सफर को जरूर जरूर जरूर एंजॉय कीजिए. तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं ये ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन.

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। तो हम आज टाइम वेस्ट ना करते हुए ब्रिस्बेन एंड क्वींसलैंड की कुछ हेडलाइंस को जानते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी अपडेट्स मिलने वाली है। साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में तेज हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी की तो उन्होंने कई तटीय इलाके के लिए स्ट्रांग विंड वार्निंग जारी की है। लोगों को समुद्र किनारे अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। वहीं पर अगर हम ब्रिस्बेन की बात करें तो ब्रिस्बेन लगातार बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स का हब बनता जा रहा है। शहर ने LNG 2029 जैसी बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी का अधिकार जो है वो हासिल किया है, जिससे कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। जानेंगे थोड़ी देर बाद और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में।

हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे हैं ट्रैक्स को। और वैसे भी दोस्तों, आज ब्रिस्बेन में मौसम जी ठंडा रहेगा। सुबह हल्की ठंड और दिन भर में लगभग 22 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की संभावना है। तेज हवाओं के कारण बाहर निकलते समय जैकेट तो वही रखनी जरूरी है, क्योंकि मौसम कब करवट ले ले कुछ पता नहीं। तो आइए फिर इसी के साथ हम एंटरटेनमेंट की दुनिया में जरा जाते हैं और झांक कर देखते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। दोस्तों, हॉलीवुड की नई फिल्म रनर इन दिनों 22 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की संभावना है। तेज हवाओं के कारण बाहर निकलते समय जैकेट तो वही रखनी जरूरी है, क्योंकि मौसम कब करवट ले ले कुछ पता नहीं। तो आइए फिर इसी के साथ हम एंटरटेनमेंट की दुनिया में जरा जाते हैं और झांक कर देखते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। दोस्तों, हॉलीवुड की नई फिल्म रनर इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि इसमें ब्रिस्बेन

ब्रायन एडम्स जो है वो अगले ही साल अपनी रोल विद द पंचेस टूर के साथ ब्रिस्बेन आने वाले हैं और इस कॉन्सर्ट में उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई पॉप स्टार नेटली इमरुलिया भी स्टेज पर परफॉर्म करने वाली है। तो है ना ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इसी के साथ स्पोर्ट्स अपडेट जानते हैं। तो दोस्तों, ब्रिस्बेन में आयोजित यूसीआई बीएमएक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप्स तेज हवाओं की वजह से प्रभावित हुई है। इलाइट फाइनल्स रद्द करनी पड़ी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जेस एल्समस और जोश जॉली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड अपने नाम किया है। वहीं पे दोस्तों, भारत में मॉनसून कई राज्यों में सक्रिय है और मौसम विभाग ने भारी बारिश वाले इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी है। यात्रा करने वाले लोग जो है मौसम अपडेट देखकर ही घर से जरूर निकले। और वैसे भी दोस्तों, अगर हम अपने विचारों को पॉजिटिव रखें ना, तो हर चीज अच्छी होने लगती है। जी हाँ, हर नई सुबह आपको एक नया मौका हमें देती ही देती है। अब भाई, सपनों को सच करना है तो मुस्कुराने का और आगे बढ़ने का हौसला हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। तो आइए फिर अब लगातार हम सुनते हैं कुछ गीत, यानी कि दो गीत हम आपको सुनाएंगे रेडियो ब्रिस्बेन में। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। वैसे दोस्तों AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब पढ़ाई, बिजनेस और रोजमर्रा के कामों का एक अहम हिस्सा बनती ही जा रही है। वैसे भी अगर हम कुछ वायरल फैक्ट की बात करें तो दोस्तों लोग जो है ना आजकल क्या करते हैं, आजकल हम YouTube देख ले, Instagram देख ले, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म में अगर हम झांक कर देखें तो अगर हम खुद की भी बात करें, अब कोई भी लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज जो है वो देखना पसंद नहीं करता। हाँ, ब्लॉगर्स जो है ब्लॉगिंग करते हैं उन्हें जरूर हम पसंद करते हैं, लेकिन अगर मैं शॉर्ट वीडियोस की बात करूं तो मैक्सिमम 30 सेकंड से ज्यादा वीडियो देखना लोग पसंद नहीं करते हैं, यानी कि छोटी छोटी वीडियोस क्लिप्स ही पसंद करते हैं। वहीं पर अगर मैं हेल्थ टिप की बात करूं दोस्तों, दिन की शुरुआत हमेशा जी गिलास पानी से जरूर कीजिए, हल्की वॉक जरूर कीजिए, क्योंकि पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करने के लिए और साथ ही साथ जी चांदनी का सफर सुनने के लिए जी आपको पानी पीना, अपनी एनर्जी को बरकरार रखना तो पड़ेगा ही। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें कुछ गानों की, तो गाने अगर हम पुराने वर्सेस न्यू गाने को अगर हम कंपेयर करें तो भाई ओल्ड गाने जो है वो वैसे भी गोल्ड है। क्यों? क्योंकि जी पुराने गाने जो मैं आपको सुनाती हूँ उसमें कुछ शब्द, कुछ लाइंस, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मतलब वाकई ही अंदर से ना हमें झंझोर कर रख देती है। अब झंझोर कर रखने वाली बात ये है कि वो ना पहले हमारा जो कनेक्शन होता थे वो दिल के दिल से तार जुड़ती थी आपस में, तो उससे गाने बनते थे। दिल का कहते हैं ना कि हम लोग अपने दिल की जो बात है, दिल का इजहार है, वो हम गाने के थ्रू किया करते थे जो सामने वाले को समझ आ जाया करते थे। अगर हम आज के गानों को बात करें, हाँ आज का बुरा नहीं होते, आज के टाइम के गाने अच्छे हैं लेकिन सिर्फ सुनने लायक है, हाँ ठीक है, लेकिन जो फीलिंग्स की बात करें जी वो तो दम आज भी पुराने गानों में ही है। तो आइए फिर इसे एंजॉय करते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

0: यार नाटक ना कर, नच ना यार, नच ना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्र नचना, भैन की सगाई च भाई नचना ही पैंदा।
1: हाँ हाँ तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: ए गल चंगी बोली।
3: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना।

0: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने आज एंटरटेनमेंट की दुनिया ब्रिस्बेन क्वींसलैंड हमने बहुत सारी न्यूज अपडेट्स आज जानी है। इसी के साथ दोस्तों आपको पता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? दोस्तों जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत होती है लगातार कोशिश करते रहना। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों जो रुकते नहीं है कभी भी। इसीलिए हमेशा हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। याद रखिए, छोटे छोटे जब हम कदम बढ़ाते हैं और छोटे छोटे कदम ही हमारे बड़े सपनों तक पहुंचाते हैं हमें। इसीलिए जरूरी नहीं है कि कुछ पाना है तो सबसे पहले शॉर्टकट अपनाएं। जी नहीं, अपने लाइफ में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट की खुशी थोड़ी देर के लिए होती है लेकिन उसका नुकसान हमें बहुत लंबे टाइम तक झेलना पड़ता है। इसीलिए कभी भी लाइफ में कुछ भी चीज में आगे बढ़ने से पहले हमें छोटे छोटे कदम ही बढ़ाने हैं। जल्दी जल्दी पहुंचने से क्या होता है, नुकसान ही होता है। इसीलिए छोटे छोटे कदम बढ़ाएं और अपने सपनों को साकार कीजिए। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारी बातें जानी है, बहुत सारी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की दुनिया क्वींसलैंड ब्रिस्बेन कहां कहां से अपडेट्स आप सभी के लिए जानने लेकर आई थी। आशा करती हूं आपको जरूर जरूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो ये प्रोग्राम है यानी कि जानने का सफर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ अब दीजिए मुझे इजाजत। टेक केयर, बाय बाय। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। हैव अ वंडरफुल डे ब्रिस्बेन। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।
1: ये क्या शेखर, वो दोनों तो ऐसे ही चले गए, उन्हें जलाने का मौका ही नहीं मिला।
2: आज के लिए इतना काफी है संजना, आगे आगे देखो होता है क्या।

0: What the hell are you doing?
1: बहुत प्यार आ रहा है तुम पर।
0: But लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे?
1: Who cares? जो देख रहे हैं उन्हें देखने दो और जो जल रहे हैं उन्हें जलने दो।
2: Okay.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ऑपरेशन सिंदूर भारत की बड़ी कामयाबी, पाक सेना ने छिपाई नाकामी, इमरान खान की बहन ने खोली मुनीर की पोल। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने युद्ध के मैदान में अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जीत की कहानी गढ़ी। नियाजी ने कहा कि 4 दिन तक चली लड़ाई वैसी नहीं थी जैसे पाकिस्तानी जनरलों और नेताओं ने जनता के सामने पेश की है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा था और पाकिस्तान ने अपनी नाकामी लगातार छिपाई। अमेरिका के जमीनी हमले पर ईरान की ट्रंप को दो टूक। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि उसने खर्ग द्वीप पर जमीनी हमला करने की कोशिश की तो उसे इसके बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये द्वीप ईरान का सबसे अहम रणनीतिक तेल केंद्र है, जहां से देश के कुल कच्चे तेल का लगभग 90% निर्यात होता है। एंडी बर्नहैम बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, राजनीतिक और आर्थिक मॉडल में बड़े बदलाव लाने के दिए संकेत। कार स्टीमर के इस्तीफे के बाद सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नेतृत्व चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल कर एंडी बर्नहैम ने यूनाइटेड किंगडम के 59वें प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाल ली है। इसके साथ ही वो पिछले 10 वर्षों में यूके के 7वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। 56 वर्षीय बर्नहैम ने बकिंगहम पैलेस में किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का निमंत्रण स्वीकार किया। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। सिक्किम बजट विधानसभा में हुआ पेश, 19,215 करोड़ का बजट। राज्यपाल बोले, 2047 तक विकसित राज्य बनाने का रोड मैप तैयार। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के अभिभाषण के साथ सिक्किम विधानसभा का 4 दिवसीय बजट सत्र शुरू हुआ। पहले दिन मुख्यमंत्री एवं वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह तामंग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 19,215 करोड़ रुपए का आम बजट पेश किया। साथ ही सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 3 महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पेश किए जाने पर चर्चा जारी रखने की उम्मीद जताई। असम में बाढ़ से 1.7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, सेना ने शुरू किया ऑपरेशन जल राहत। रात भर हुई भारी बारिश के कारण गुवाहाटी के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार मेघालय की पहाड़ियों से आने वाले पानी और वशिष्ठ नदी का जलस्तर बढ़ने से ये गंभीर स्थिति पैदा हुई है। हालात ये हैं कि अब लोगों को बचाने के लिए सेना ने ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: LKR Event proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
2: All right.
3: Yeah, we are back.
2: Yes, we are.
3: Okay, what else? ये गाना मैं भी चुना हूँ, शायद आप लोगों को अच्छा लगे.
2: Are you gonna play it now?
3: Okay. Did you get the traffic report?
2: No.
3: Is it able to work?
2: No,
3: with the
2: no,
3: traffic report?
2: It's not. For some odd reason.
3: It's not working?
2: No.
3: Oh, that's not good. What's going to happen?
2: No one will know.
3: I just
2: what's
3: go for a couple of weeks
2: road.
3: Now.
2: Well.
3: Oh, my God. Okay. Deegan deviation.
2: Yep.
3: Breckenridge Hazard southbound is now cleared. Okay. Above Desert Road. Road Cooper's plane crash southbound is now cleared. Old Cleveland Road Cooper Road multi-vehicle crash left lane blocked. Okay, this has been all cleared now, isn't it?
2: By now, yes. No, it's 8 o'clock. It's 8 o'clock.
3: Old Cleveland Road Cooper Road multi-vehicle crash left lane blocked eastbound towards Camp Hill. So I don't see any clearing.
2: Yep.
3: That's about it. और जो गाना मैंने सोचा है, तैयार है, ready है?
2: हाँ हाँ.
3: Okay, here we go. Hopefully you guys will like it.

0: a movie. It's just
1: ऑल राइट,
0: a
1: इट वाज वन
0: video,
1: ऑफ
0: like
1: दोज,
0: just a
1: या
0: song,
1: ओके,
0: yeah. But I really liked it, so
1: चलो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, उम्मीद है आपको भी
0: thank
1: अच्छा
0: you.
1: लगा होगा. ओके, ओ दिस अनदर मूवी आई थिंक, बॉय देयर सो मेनी मूवीज कमिंग, देयर इज अ मूवी कॉल्ड सरदार जी, डू यू सी इट ओवर देयर?
0: Yeah. Must I play it?
1: या प्ले इट प्लीज.
0: Okay.
2: भरतमान कोल दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध. व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देव करोड़ इन एंड एज सरपंच.
3: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा है, किसे राजनीतिक पार्टी दा नहीं.
2: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाल सिंह एंड सरबजीत चीमा. देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च.
4: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता. लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है. स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं. प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को. फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660.
5: प्रिया,
6: Digicel, better together.
7: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
5: Priya, next month Mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
8: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
5: अच्छा, वो क्या?
8: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
8: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
0: Alrighty. Hope you enjoyed that little bit of a break from us. Okay, we have to

0: Okay, I don't think you're coming on
1: sorry,
0: air.
1: sorry,
0: Hello?
1: विशाल, sorry, विशाल, sorry, विशाल, मैं आपका कॉल नहीं लिया. मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी कुछ फोन और भी यूज हो रहा है. मैं स्टूडियो पर नहीं हूँ. आई एम ऑन आउटसाइड स्टूडियो. लेकिन आपका जो खत मिला मुझे और जो गाना आप चाहते हो, चलो सुना देता.

0: कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। क्या बात है, सपनों में भी आया और दिल में भी समाया। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं और विशाल बड़े थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने कहा वैसे यूजुअली मैं कॉल लेता हूँ लेकिन आज नहीं ले पाया। खैर चलो, आपका जो गीत था बजा दिया मैंने, बहुत अच्छा लगा। और अमिता, आई होप यू लाइक इट टू।
1: आई लव दैट सॉन्ग।
0: और हमारे श्रोताओं,
1: इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स।
0: या विशाल हैज गॉट वेरी गुड चॉइसेस, ही इज अ रफी
1: फैन, आई नो। या
0: कुछ अगर चाहे तो विशाल से पूछिए। आई थिंक बिकॉज ऑफ हिज फादर, सी इट गोज टू शो कि जब पेरेंट्स घर में गीत पसंद करते हैं, घर में जब गीत बजता है तो बच्चे भी पिक करते हैं।
1: यस,
0: दैट्स हाउ वी लर्न्ड।
1: वी टू, मी टू।
0: या या, घर पर ये सब होना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई सपोज यू गोइंग टू प्ले समथिंग नाउ।
1: या, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट विशाल रिक्वेस्टेड, बट नेवरदलेस।

0: रिश्ता आशिक का कुमार सानू ने गाया था सैफ अली खान और ट्विंकल खन्ना के लिए। देखिए इसके बारे में चर्चा हो रहा है जो हिजाब ये सब, ठीक है, लेकिन आप जानते हो पहले जमाने में हमारे जो हिंदू औरत होते थे, हिंदू फॉलो करने वाले, दे यूज टू वेयर टू कोल्ड ओढ़नी। आई रिमेम्बर दे यूज टू कवर द ईयर्स। अरे अरे अरे भगो भगो बड़कू आ गया, बड़कू,
1: यस यस यस,
0: बड़कू आ गया तो ओढ़नी ओढ़ना, सामने नहीं जाना, ये सब होता था, ये हमारे कल्चर में भी था। सो आई थिंक दैट हिजाब इज वेरी सिमिलर टू, मे बी बिट क्लोजर टू ओढ़नी देन द अदर थिंग, राइट? बट आई मीन इट्स द पर्सनल चॉइस, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? हम कहीं जाते, अगर हम गुरुद्वारा जाते हैं तो अपना ऊपर
1: ऑफ कोर्स, यस,
0: इट्स अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, राइट? इट्स ऑल रिस्पेक्ट टू द लॉर्ड। सो बट हिजाब इज ओके विद मी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? इट्स जस्ट कवरिंग द हेड, यू कैन सी द फेस एंड एवरीथिंग, राइट? ओढ़नी, ओढ़नी इज जस्ट कवरिंग, ना? यू कैन सी
1: वेयर इज योर माइक?
0: Oh, sorry. Okay.
1: Thank
0: you. So, yeah. So, ordinary and hijab, similarities in this, where the face is exposed, right? You can see the face. Yeah. But like I said, I don't know whether it went on air or not, but I can remember when I was a child, ordinary was very important in those days for a Hindu woman. And... जैसे मैंने कह रहे भगो बड़कू आ गए, संबोरी सास ससुर ससुर और बड़कू अगर आ जाए तो ओढ़नी मस्ट बी, दे नेवर यूज्ड टू लुक दैट वे, दैट साइड वेयर दे वेयर। अभी तो जानो बहुत चेंज हो गया है, आई एम नॉट गोना से इन हाउ मेनी इयर्स इट्स चेंज्ड फ्रॉम व्हेन आई सॉ इट, बट या पीपल ऑफ माय एज वुड नो दिस थिंग, this was a mark of respect. Anyway, oh, I have to watch that one. I missed it. Yeah, was it this morning?
1: It was on the Drive show last night on ABC, and they did say you can. Yeah. But they played a snippet this morning, so that's how I heard it this morning. I think if I find time sometime today, later or whatever, you can actually.
0: You send me a link if you find it.
1: You go to a podcast or something on ABC. I'm sure you'll find it and you can listen to it.
0: Yes. The pallu of a sari was often draped over the head. In northern India, a longer veil called the ghunghat was common, especially among married women. In many communities, covering the head was considered a sign of modesty, respect and tradition. Particularly in the presence of elders or during worship. There you go. हम मंदिर में भी जाते हैं तो हमारे जो जो माँ बहन है, बेटियाँ हैं जो, they wear that, you know, it's a mark of respect. So, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कल्चर में है कुछ. I know that there's a Duncan family that they wear too. Did you know that? The Duncan family?
1: No.
0: अरे? They wear this thing, head, they cover the head. Will have like a fita in the front, you know?
1: Okay.
0: Didn't you know that?
1: Maybe if I see, maybe I don't know what they're called, but maybe if I see.
0: Head covering the head. Actually, if a hijab is worn, that looks very pretty to me, you know? Hello?
1: Yep.
0: I was getting a call. I called him on my regular phone. Okay, chalo aage badhenge, gaana sunte hain, phir aur baatein karenge. Chalo.

0: जोकर
1: जोकर साधु प्रसाद अंकल, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपका फोन नहीं ले पाया बिकॉज वो प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूँ. मैं कोशिश कर रहा था कॉल करने को लेकिन जा नहीं रहा फोन. और साथ साथ में विशाल भाई, शायद मेरा यहाँ पर विशाल भाई यहाँ पर मेरा एंड में कुछ प्रॉब्लम है शायद, इसीलिए नहीं, क्योंकि यहाँ देखो दो चीज़ है. एक तो मालूम नहीं फ़ोन में मैं क्या कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ अभी, और साथ साथ में यहाँ का रिसेप्शन बड़ा पुआ जा रहा है. यहाँ पर आई एम वेरी लकी टू गेट अबाव रिसेप्शन ये प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन चलो. हाँ, मुझे लग रहा है साधु प्रसाद अंकल जी शायद बात करना चाहते थे ओढ़नी पर, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि उन दिनों में दिस वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर फॉर पीपल टू लेडीज टू हैव द रिस्पेक्ट, यू नो, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, बिकॉज ये हमारे ही इज द एल्डर एल्डरली, शायद मोस्ट एल्डर्स में शायद सबसे एल्डर अंकल जी है. और but the mind is sharp as anything, I can tell you that nothing goes past him. He keeps everybody in line, I suppose. Anyway, sorry uncle. All right, aage badhte hain. Aur is samay, wow, 10 minute reh gaya is program mein.
2: Yep. Okay.
1: We did well.
2: I've got a message here. Prem ji, thank you so much. She says, there are many Christian sects too who cover their heads when attending church. And there are some sects that cover their heads with scarves all the time. So maybe that was one of the ones you were talking
1: pagadi,
2: about.
1: Pagadi?
2: No. Christian we're talking about.
1: They do. Yes, they do.
2: And then we're talking
1: about
2: the...
1: Catholics also cover their head, if I'm not mistaken.
2: She goes on further to say, men are weak, so to deter them from looking around at other women, the tradition was to stay modest in dressing and covering heads in the presence of adult males.
1: I will not touch that with a 10-foot pole, I'm telling you right now.
2: Okay.
1: I'll let it pass.
2: Okay.
1: I'll let it slide.
2: Okay. I think I'm going to...
1: Not pass. I will let it slide.
2: Maybe got time for two songs if I squeeze it in.
1: Well, क्या करेंगे, भगवान ने तो बनाया, भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो आगे मैं क्या कहूँगा और?
2: Okay.
1: ठीक है, yeah. लेकिन दिमाग दिया है लोगों को.

0: मेरे होश ले लो दीवाना बना दो, अभी आपने सुना दोस्तों। और अब हम यहाँ से जाने की सोच रहे हैं इस प्रोग्राम से।
1: सोच रही है
0: लेकिन आगे क्या रखा है कौन जानता, ऊपर वाला के हाथ में सब खेल है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और थैंक यू वेरी मच, आपने रेडियो को सुना।
1: ओके, वी'ल से आवर नमस्तेस एंड होप यू enjoy the rest of your day, and we will see you all tomorrow. Yes. Namaste.
0: Tomorrow will be better reception. Namaste.

मॉर्निंग, वेलकम बैक, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर एक बार फिर से इस नई सुबह के आगाज के साथ सताक्षी है आपके साथ और मेरे साथ है कुछ बहुत ही एनर्जेटिक और प्यारे से ट्रैक्स। जी हाँ, रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर शुरू हो चुका है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस, और इट हैपेंस में एक बार फिर से एक चल सा शो लेकर आपके लिए सताक्षी हाजिर है। वैसे आंखें मलना बंद कीजिए और प्लीज उठ जाइए क्योंकि सुबह बहुत हसीन है और इस सुबह का साथ बहुत हसीन है। देखिए, मैं तो अपने वादे के मुताबिक आप तक पहुंच गई हूँ, लेकिन आप अब कितने जोश के साथ इस शो को सुनने के लिए रेडी हैं ये आप मुझे बताना मत भूलिएगा। फिलहाल चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं एक और बढ़िया से गाने के साथ और उसके बाद उन्हें विश करेंगे ना जिनके लिए आज का दिन खास है। तो स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस, और ये रहा अगला ट्रैक आपके लिए।

वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर सदाक्षी को सुन रहे हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस में कुछ बेहतरीन मॉर्निंग ट्रैक्स। वेल, जिनके लिए आज का दिन खास स्पेशल और बेहतरीन है क्योंकि आज हैं वो बर्थडे बेबीज, यानी बर्थडे बॉय, बर्थडे गर्ल्स, बर्थडे विमेन्स, बर्थडे मेन्स। आप सबको आपके जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और बस यार, दुआ यही है कि ये जो प्यारी सी स्माइल अभी मेरी बात की वजह से आई है ना, ये स्माइल मेरी बात के बिना भी हमेशा आपके चेहरे पर रहे। जिनके लिए आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज हुई थी उनकी शादी, जिसमें आपने हमें नहीं बुलाया था, बट स्टिल हमारी विश यही है कि विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और यूं ही साथ साथ मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

रिवर के किनारे खिली हुई इस सुनहरी धूप और कड़क कॉफी के साथ उम्मीद है कि आपके एक बेहतरीन दिन की शुरुआत हो रही होगी। वैसे एक बात सच सच बताइएगा, आज सुबह उठते ही किस किस के साथ कोई छोटा सा एलओएल मोमेंट हुआ, जैसे पेस्ट समझकर फेस वॉश हाथ में ले लिया हो या जल्दीबाजी में उल्टी टी शर्ट पहन ली हो? हाँ हाँ, सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ, मेरे साथ भी कई बार होता है और हम सबके साथ होता है। हम सब हर सुबह परफेक्ट दिखने की इतनी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं लाइफ हमारी टांग खींच ही लेती है। लेकिन चिढ़ने का नहीं बॉस, गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराकर कहिए कि इट हैपेंस। जिंदगी परफेक्ट होने के लिए है ही नहीं, ये तो छोटे छोटे फनी हादसों का नाम है। और इसी हादसे के नाम एक परफेक्ट सा गाना आपके लिए प्ले करते हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर। ये रहा अगला ट्रैक।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर. और किसी ने क्या खूब कहा यार कि परफेक्ट होने की चाह में अपनी सादगी मत खोना, गलतियां तो सबसे होती हैं, इस बात पर क्या रोना, चाय गिरे या चाबी खोए, बस दिल से हंसो और कहो इट हैपेंस यार, लाइफ का मजा तो है, बस चलते रहना है ना. तो जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए और छोटी छोटी गलतियों से एक्सपीरियंस लीजिए, उन्हें बैठ कर सोच कर रोना बंद कीजिए. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने स्टार्टिंग में कही कि अपनी सादगी को नहीं खोना है. कई बार परफेक्ट दिखने के चक्कर में हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो हम हैं ही नहीं. परफेक्ट लुक, परफेक्ट ड्रेस जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद और हम पहन लेते हैं, है ना. तो बस जैसे हैं वैसे रहिए, जैसा आपको पसंद है एक्चुअली वैसे रहिए. और एक अगला ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ इसी बात पर, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM.

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर आप है सताक्षी के साथ और मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों ये वक्त है आज एक बार फिर से गानों को बैक टू बैक सुनने का यानी गानों की हैट्रिक का। सो चलिए गानों की हैट्रिक के इस पहले ट्रैक के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन सुनते रहिए सताक्षी के साथ गानों की हैट्रिक।

पानी पर गानों की हैट्रिक सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ कई बेहतरीन और खूबसूरत गाने। लेकिन गानों की हैट्रिक का ही लास्ट ट्रैक दोबारा सुनने को थोड़ी ना मिलेगा इस प्रोग्राम में। आइए इसे एंजॉय करते हैं और इसके उस पार ढेर सारी बातें आपसे होंगी। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हमारे ब्रिस्बेन के दोस्तों में से कितने लोगों ने कल रात को खुद से वादा किया था कि कल सुबह तो पक्का अलार्म बजते ही बेड से कूद जाएंगे और बस दौड़ लगाने निकल जाएंगे। और आज सुबह क्या हुआ, अलार्म बजा, आपने इसे स्नूज किया और फिर से सीधे 2 घंटे बाद आंख खुली। अब इसी बात पर खुद को कोसना बंद कर दीजिए। अच्छा, आप नहीं, वो बगल में जो सो रही है ना, वो भी कभी कभी ये करती हैं कि यार तुम तो रोज कहते हो कि अपनी फिटनेस पर ध्यान दोगे, देखो पेट कितना निकल आया, देखो ऐसा कितना है। यार देखिए, परफेक्शन जितना ढूंढेंगे ना उतना आप परेशान होंगे। सो बस अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए और उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए। वैसे देखा जाए तो सुबह सोने का अपना ही एक अलग सुख है, फिटनेस तो शाम को भी हो सकती है ना। तो गिल्ट को गोली मारिए और सुनिए ये मस्त सा एनर्जेटिक गाना। लेकिन हाँ भाई, फिटनेस शाम को हो सकती है, यानी कि फिटनेस का ध्यान रखना नहीं भूलना है। ठीक है जी, एक और ट्रैक मेरे साथ एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर। दोस्तों आजकल ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मालदीव में घूम रही है। हर कोई सुबह उठकर एस्थेटिक ब्रेकफास्ट बना रहा है और सबकी लाइफ में खुशियां हैं। फिर हम अपनी बिखरी हुई अलमारी और रात की बची हुई सब्जी को देखते हैं और सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है। अरे भाई वो सिर्फ 10 सेकंड का फिल्टर है, असलियत में सबकी लाइफ में रायता ही फैला हुआ है। कोई अपनी बोरिंग दाल की फोटो नहीं डालता, इसका मतलब ये नहीं कि वो रोज पास्ता खा रहा है। इसलिए दूसरों के रील्स देखकर अपनी रियल लाइफ से नफरत करना बंद करिए। हमारी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, बिना किसी फिल्टर वाली लाइफ ही आपकी जो है वो सबसे बेस्ट है। और उसी बेस्ट सी लाइफ के नाम ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।